FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम ने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का

0: के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

और श्रोताओं, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। आज की अर्चना में जिन कलाकारों को आपने सुना वो थे अनूप जलोटा, सुरेश वाडकर, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल और हरिओम शरण।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर

गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण समूह स्वर में। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, चिंतन में अब सुनते हैं जीवन के सुख दुख के विषय में।
1: संसार की बनावट कुछ ऐसी है कि यहाँ साधन और सुविधाएं भी हैं और अवरोध और आपदाएं भी। साधन सुविधाएं परमात्मा ने इसलिए दी हैं कि संसार के सब प्राणी उनसे जीवन धारण करने और अपनी प्रसन्नता बनाए रखने में समर्थ रहें। पर जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करता है तो अवरोध और संकट उठ खड़े होते हैं। संकट बुरे लगते हैं पर प्रकृति की निश्चित सुधार प्रक्रिया के ही अंग होते हैं। उन्हें भी संपूर्ण मानव जाति को उसी तरह मिलजुल कर सहन करना चाहिए जिस प्रकार साधन और सुविधाओं का उपयोग मिल बांट कर किया जाता है। दोनों ही क्षेत्रों में मनुष्य मनुष्य का आत्मीय भाव संसार में स्वर्गीय परिस्थितियों का अवतरण करता है। यदि मनुष्य अपने लिए सुख ही सुख चाहे, दूसरों के कष्ट में हाथ ना बटाए, तो प्रसन्नतादायक परिस्थितियां नारकीय घड़ी में बदल जाएंगी। आज का युग ऐसा ही है, सब अपने लिए अधिकतम चाहते हैं, साधन और सुविधाएं तथा कष्ट और पीड़ाएं नहीं बांटना चाहते, अपने भाई की भी नहीं। इन विपन्नताओं के कारण ही आज मनुष्य समाज सर्वत्र अशांत और असंतुष्ट दिखाई पड़ रहा है। यदि मनुष्य सुख सुविधाओं की तरह हर किसी के कष्ट भी बांटने को तैयार हो जाए तो संसार में दुख और कष्ट से लोग दुखी नहीं होंगे। आत्मीयता और ममत्व के प्रकाश में तो बड़े से बड़े अभाव भी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। पीएससी के एक 30 वर्षीय युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया था।

0: उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। गुर्दे खराब हो जाने के कारण सारा रक्त विषाक्त हो गया था। शरीर में सूजन आ गई थी और उसे सदैव ज्वर बना रहता था। जीने की लालसा बड़ी बिकट होती है। युवक चाहता था कि जीने को मिले, पर इस बीमारी के चलते यह संभव नहीं लग रहा था। बहुत दुखी रहता था, उसकी आंखों से आंसू झरते रहते। चिकित्सकों ने बताया कि यदि किसी अन्य व्यक्ति का गुर्दा मिल जाए तो गुर्दे का ऑपरेशन करके स्वस्थ गुर्दे से ही जीवित रहा जा सकता है। पर आखिर इतनी उदारता बरतने के लिए कौन तैयार होता, कौन अपने गुर्दे दान देता? चिकित्सकों ने कहा कि तुम्हारे परिवार का ही कोई व्यक्ति एक गुर्दा दे दे तो काम चल जाएगा। इस पर युवक ने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा कि डॉक्टर साहब, आप जानते हैं संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता। आजकल की स्थिति से आप अवगत हैं, भाई भाई में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती, कौन देगा मेरे लिए गुर्दे का दान? मित्रता और ममत्व गए जमाने की बातें हो गई हैं। मुझे तो मरना है, सो उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। डॉक्टर की रिपोर्ट युवक के 27 वर्षीय छोटे भाई ने पढ़ी। वह भी PSC का जवान था। उसने भाई को पत्र लिखा, भैया, राम और भरत की इस भूमि में अभी भाई भाई के प्रेम की समाप्ति नहीं हुई है। हमने भगवान की दी हुई सुविधाएं बांटी हैं, तो उसके दिए हुए कष्ट भी बांट सकते हैं। मेरे पास दो गुर्दे हैं, दोनों स्वस्थ हैं, एक एक से दोनों जिएंगे, पर आपको मरने न देंगे। इस आशय की सूचना उसने डॉक्टरों को दी तो वे ये कहे बिना न रहे, यह धरती मानवता के जीवित रहने से ही बनी है।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे जीवन के सुख दुख के विषय में। वाचन था रामगोपाल का। FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 kHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है।

और श्रोताओं, इस सभा में सुबह 7 बजे आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा अपने जीवन में खेलों को प्रोत्साहन दीजिए। साथ ही व्यक्तित्व के अंतर्गत बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। कार्यक्रम नमस्कार कोटा में आज बात होगी विधवा महिलाएं सम्मान की अधिकारी है इस विषय पर। साथ ही बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर। सुबह 7:30 पर श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का और सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे डॉक्टर शाकिर हुसैन। सुबह 9:10 पर श्रोता सुन सकेंगे फिल्म संगीत और 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता। परिसंवाद में आज का विषय होगा टूटती शादियां जिम्मेदार कौन, समाधान क्या है। और साथ ही जानकारी का विषय होगा महिला का स्वास्थ्य उसकी पूंजी है।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दोपहर 12 बजे। शाम 5 बजे प्रसारित होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज संवाद का विषय रहेगा किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं। साथ ही मेरी प्रेरणा में बात करेंगे विद्वान अष्टावक्र की और विज्ञान धारा के अंतर्गत जानिएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। और नॉलेज कॉर्नर में आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर। शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत ने आज आनंद लीजिएगा राज बब्बर अभिनीत फिल्मों के गीतों का।

कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे पशुओं में कुपोषण के लक्षण और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर। साथ ही चौपाल में आप सुनेंगे भेंट वार्ता श्री महेंद्र मीणा से, विषय होगा मधुमक्खी पालन में कृषक अनुभव, और जानकारी का विषय होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि।

शाम 7:30 पर आनंद लीजिएगा राजस्थानी लोक संगीत का, और रात्रि 8 बजे श्रोता सुन पाएंगे चित्रपट संगीत।

रात्रि 9 बजे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार सुनेंगे।

नए दिन की नई सुबह का नया पैगाम है, उजालों से उम्मीद सजाना हमारा काम है। कि नए दिन की नई सुबह का नया पैगाम है, उजालों से उम्मीद सजाना हमारा काम है। उठो और भर लो हौसला अपनी उड़ान से, क्योंकि हर कोशिश में छुपा कामयाबी का नाम है। और कहते हैं ना कि छोटी छोटी कोशिशें ही हमें बड़ी जीत की तरफ लेकर जाती है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, प्रोग्राम है नमस्कार कोटा। और इस प्यारी सी सुबह में रेडियो के इस पार से उस पार तक आ रहा है सुबह का पहला सलाम, गुड गुड मॉर्निंग। और दोस्तों कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। और ऐसा ही कुछ कहता है हमारा आज का बेहतरीन विचार कि जिंदगी में कभी भी बीते हुए कल को लेकर अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि आज के दिन को इतना बेहतरीन बना लेना चाहिए कि आने वाला कल खुद ब खुद संवर जाए।

बात तो ठीक भी है कि जो गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता, बस हम आगे के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, हर संभव कोशिश की जाए। जी हाँ, हर संभव कोशिश की जाए आने वाले पल, अपने आने वाले कल को संवारने की, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है ना।

सुबह के 7:08 गुड मॉर्निंग, आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

जी हाँ, नई मंजिलों को हमारा इंतजार है और वो मंजिलें मिलेंगी कब? जी हाँ, वो मंजिलें हमें तब मिलेंगी जब हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि

और श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं मौसम की। और श्रोताओं तापमान की अगर हम बात करें तो कल का जो अधिकतम तापमान था वो दर्ज किया गया 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28.8 डिग्री सेल्सियस।

दोस्तों ऐसा कहता है ना कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, और सही भी है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नई नई चीज़ें आती जाती है और जो पुरानी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा पुरानी हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी होती है जो अगर हमारे जीवन में बनी रहे तो हमारा जीवन कभी पुराना नहीं होता, हमारी जो ऊर्जा है वो हमेशा नई बनी रहती है। अब खेल की अगर हम बात करें तो आप स्पोर्ट्स को ही ले लीजिए। एक वक्त था, एक ज़माना था जब सुबह शाम बच्चे खेल के मैदान में नज़र आते थे। हम खुद भी अपने बचपन में गली मोहल्ले में मैदानों में खूब खेले हैं, और अब जमाना बदल गया है। अब बड़े तो क्या, बच्चे भी दिन भर स्क्रीन पर लगे रहते हैं, सुबह से शाम मोबाइल लैपटॉप टीवी जैसे और कुछ ज़रूरी रहा ही नहीं हो हमारी ज़िंदगी में, पूरा वक्त हमारा इन चीज़ों में जाता है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि स्पोर्ट्स सिर्फ हमारी बॉडी फिट रखने के लिए नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और साथ ही साथ टीम स्पिरिट के लिए भी ज़रूरी है। खेल कोई सा भी हो हमारे जीवन का हिस्सा ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि खेल खेल रहे हैं इसमें कौन सा हमें मेडल मिल जाएगा, तो हमेशा हर जो काम हम करते हैं वो किसी परिणाम के लिए हम नहीं करते हैं या किसी मेडल के लिए नहीं करते हैं। और खेल भी सिर्फ मेडल जीतने का नाम नहीं है, खेल का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, खुद को सक्रिय रखना और सबसे ज़रूरी हार कर भी दोबारा खड़े होना सीखना। जी हाँ, सोचिए ज़रा जब छोटे बच्चे मैदान में खेलते हैं तो उन्हें सिर्फ खेलना नहीं आता, उन्हें टीम वर्क सीखना आता है, दोस्ती करना आता है, हारने पर रोना और फिर अगली बार जीतने के लिए दोबारा से दुगनी एनर्जी के साथ दुगने प्रयासों के साथ कोशिश करना आता है, और यही बातें बाद में ज़िंदगी में काम आती है। और आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी ज़िंदगी मोबाइल स्क्रीन तक सिमटती जा रही है। सुबह फ़ोन, दोपहर में फ़ोन, शाम को और रात को भी सोने से पहले फ़ोन की स्क्रीन। हमारे कदम ज़रूर चल रहे हैं लेकिन उंगलियां उससे ज़्यादा चल रही है, और इसी वजह से तनाव बढ़ रहा है। हर इंसान आजकल कहीं ना कहीं किसी तनाव में है, किसी स्ट्रेस में है, और थकान हमारी बढ़ती जा रही है। शारीरिक थकान ही नहीं बल्कि मानसिक थकान भी बढ़ रही है, और कई बार इसीलिए ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के मन उदास रहने लगता है। लेकिन जब आप कोई खेल खेलते हैं, वो कोई सा भी गेम हो, वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, या सिर्फ पार्क में आपका दौड़ लगाना ही क्यों ना हो, हमारे शरीर के साथ साथ इन चीज़ों से हमारा मन भी हल्का होने लगता है। और दोस्तों खेल सिर्फ हमें फिट नहीं बनाते, ये हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी जानता है कि सिर्फ सपने देखने से जीत नहीं मिलती है, उसके लिए हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और यही नियम हमारे जीवन पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से लागू होता है। क्योंकि जो लोग खेल को अपनी आदत बना लेते हैं उनके जीवन में उनका जो कॉन्फिडेंस

उनका आत्मविश्वास है वो अलग ही दिखाई देता है। वो चुनौतियों से नहीं डरते हैं क्योंकि खेल के मैदान ने उन्हें सिखा दिया होता है कि हर मैच जीता नहीं जाता, लेकिन हर हार से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख जाते हैं। तो दोस्तों, खेलों को प्रोत्साहन देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद खेलें। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आसपास बच्चे हैं, तो उन्हें आप खेल के मैदान तक पहुँचाइए, क्योंकि सिर्फ किताबों तक सीमित रहना आज के समय में ज़रूरी नहीं है। अच्छे मार्क्स ज़रूरी हैं, लेकिन आपका अच्छा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। और खेलने कूदने से समय बर्बाद नहीं होता है, बल्कि संतुलन जीवन में आता है। और अक्सर वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेते हैं। और पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो खेल के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियाँ हासिल की गई है। हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। और हर सफल खिलाड़ी की शुरुआत किसी बड़े स्टेडियम से नहीं होती है दोस्तों। किसी भी गली में आप जब किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इस छोटे से मैदान में, इस छोटी सी गली में खेल रहा है ये बच्चा आगे जाकर कितना बड़ा काम कर सकता है, कितना बड़ा नाम कर सकता है। तो आप खुद भी खेलों को प्रोत्साहन दें, कोई ना कोई छोटा मोटा खेल जो है अपने जीवन में आप जोड़ लें, और साथ ही साथ और बच्चों को और लोगों को भी आप प्रोत्साहित करें खेल के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब क्या ही आप खेल खेलेंगे, तब भी आपको खेल से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत करने की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती, कोई तय नियम नहीं है कि इस उम्र में ही आप खेलेंगे या इस उम्र तक ही आप खेलेंगे। तो बस अपने जीवन में जो भी खेल आप जोड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़िए। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ विचार का भी जन्म होता है, और वही हमारी सकारात्मक सोच का बीज बोता है, क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, हमारी जीवन शैली का हिस्सा भी है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैदान में बिताया गया एक घंटा हमारी जिंदगी को कई सालों की ऊर्जा दे सकता है।

आपका रेडियो धड़क रहा है एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर।

और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हर रोज हम बात करते हैं एक खास व्यक्तित्व की। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, वकील और राजनेता थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था और बहुत कम उम्र में ही शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के कारण वो प्रसिद्ध हो गए और मात्र 33 वर्ष की आयु में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे युवा कुलपति बने। स्वतंत्रता के बाद भी वे भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उद्योग आपूर्ति मंत्री बने। श्रोताओं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। साथ ही भारतीय राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा विशिष्ट नेता और चिंतक थे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि देशभक्ति और अपने उसूलों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए।

और श्रोताओं, कहता है ना कि सम्मान हर इंसान का अधिकार है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, महिला हो या पुरुष हो, हर इंसान जो है सम्मान का अधिकारी है। और कभी कभी किसी का जीवन बदलने के लिए सिर्फ सम्मान भरा व्यवहार ही काफ़ी हो जाता है। और ये बात, ये चर्चा आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। जी हाँ श्रोताओं, जब किसी महिला के जीवन साथी का साथ छूटता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोती बल्कि उसके साथ अपने कई सारे सपने, कई उम्मीदें और जीवन का एक महत्वपूर्ण सहारा भी खो देती है। ऐसे समय में उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सहारे की, अपनेपन की और सम्मान

की, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे समाज में आज भी कई जगह विधवा महिलाओं को दया की नज़र से देखा जाता है। उनके रहन सहन, उनके हंसने बोलने पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अब सोचिए जरा, क्या किसी महिला का सम्मान केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका पति जीवित है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक महिला की पहचान उसकी सोच, उसके व्यक्तित्व और उसकी मेहनत, उसके योगदान से होती है। और ये कोई अपराध नहीं है, ये जीवन की एक कठिन परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति से गुजर रही महिला को समाज के साथ की जरूरत होती है। हमारे आसपास ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करता हुए अपने परिवार को संभाला, बच्चों को शिक्षित किया और आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने साबित किया कि मजबूरी इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना सकती है। और हम सभी को ये समझना चाहिए कि सम्मान किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। हर महिला सम्मान की अधिकारी है, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो या फिर विधवा। और एक प्रगतिशील समाज बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अपनी सोच में बदलाव लाना। तो हमें विधवा महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है, उनके फैसलों का सम्मान करना ज़रूरी है और उन्हें ये एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि वे अकेली नहीं हैं, हम सब मुश्किल वक्त में उनके साथ हैं। क्योंकि किसी भी महिला को उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और उसकी इंसानियत के आधार पर हमें सम्मान देना होगा। क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा, सम्मान हर इंसान का अधिकार है और विधवा महिलाएँ जो हैं वो भी उस सम्मान की पूरी पूरी अधिकारी हैं।

आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। और श्रोताओं, आज 23 जून है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। जी हाँ, ये दिन उन लाखों लोक सेवकों को समर्पित है जो चुपचाप समाज और देश की सेवा में लगे रहते हैं। आज हम उन लोक सेवकों की बात करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सभी लोग जो जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर बड़े बड़े विकास कार्यों की चर्चा करते हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जो इन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाते हैं। और लोक सेवक ही वो कड़ी है जो सरकार और जनता के बीच पुल का काम करती है, और ये हमारी जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत इसलिए की ताकि समाज में लोक सेवाओं के महत्व को पहचाना जा सके और उन लोगों के योगदान को सम्मान दिया जा सके जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और आज के दौर में जब दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है, तब लोक सेवकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि चाहे वो महामारी का समय हो, प्राकृतिक आपदा हो या किसी संकट की घड़ी, सबसे पहले सहायता के लिए यही लोग आते हैं। तो इस अवसर पर इस दिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार नहीं करती, बल्कि ईमानदार और समर्पित लोक सेवकों के प्रयास में भी उनकी जो है बड़ी भूमिका होती है।

और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। और चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा ने, प्रस्तुति थी राजेश महावर की। और इसी के साथ इजाजत दीजिए निशा को कार्यक्रम नमस्कार कोटा से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 7:30, आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत सुनिए फिल्म असली नकली से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: और इस गीत के साथ ही शुरुआत हो चुकी है फिल्म संगीत की आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। फिल्म संगीत में आज आप सुन रहे हैं गाने सुहाने। और श्रोताओं, ये जो गीत अभी आपने सुना वो था फिल्म असली नकली से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आज सुबह 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य का विषय रहेगा, बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे डॉक्टर शाकिर हुसैन। तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई प्रश्न है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए स्टूडियो का नंबर है 2941142 और कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744।
1: शोखियों में भोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। फिल्म संगीत जारी है और आइए सुनते हैं अब अगला गीत फिल्म दो चोर से। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है RD बर्मन का।

और श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म कश्मीर की कली से। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आज सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे डॉक्टर शाकिर हुसैन। तो सुनना न भूलिएगा आज सुबह 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। और अब सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म याराना से।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म कस्मे वादे से।

0: और श्रोताओं, फिल्म कस्मे वादे के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने

0: सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत

0: मेट्रो से सफर करते थे। आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे, और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने बीएनएस और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन

0: किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एसआईटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का मान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक शॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, JD Vance ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं।

0: उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
5: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स, सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लैप्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चेदानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
2: बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में, जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य। श्रोताओं, हर मंगलवार को इस कार्यक्रम में हमारी आपसे मुलाकात होती है एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। और कार्यक्रम में आज फिर से हम हाजिर हैं एक नया विषय लेकर। और श्रोताओं, ये आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है जिसकी जरूरत हमें रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती है। और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दर्द को नजरअंदाज करते हैं और वो एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के विषय में। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का विषय है बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान। और इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई प्रश्न है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में फोन करने के लिए हमारा नंबर है 2941142 और कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर शाकिर हुसैन। तो श्रोताओं, इस विषय से जुड़ा आपका भी प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइन खुली है। और इसी के साथ कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद तमाम श्रोता जो हमें प्रसार भारती आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे हैं, उन तमाम श्रोताओं का मैं प्यार भरा नमस्कार उनको, गुड मॉर्निंग कोटा
2: जी। तो सर, फिजियोथेरेपी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला सवाल कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और ये किन समस्याओं के समाधान में मदद करती है।
6: देखिए, फिजियोथेरेपी इज अ मॉडर्न मेडिसिन

0: ये कहें कि एक ऐसी दवा हो गई है, दैट इज मूवमेंट इज मेडिसिन, इस तरह से कि आप अपने बॉडी को जिस तरह से मूव कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, या अपनी एक्टिविटीज को इन्हेंस कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत और अहम रोल है। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिस बाय अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हु असिस्ट, इवेलुएट, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरी एंड मेनी मोर कंडीशंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स।
1: बिल्कुल। तो सर, जब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, तो लोगों के दिमाग में सीधा आता है एक्सरसाइज। तो क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज है, या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई टेक्निक है?
0: देखिए, फिजियोथेरेपी आज के समय में एक ब्रॉड लेवल पे पहुंच चुका है, जिसमें हम मॉडलिटीज, मशीन्स का उपयोग करते हैं, एक्सरसाइज का उपयोग करते हैं। आजकल काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे ड्राई नीडलिंग है और कपिंग है, इनसे बॉडी को एक्टिवेट करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी काफ़ी विस्तार पूर्वक ब्रांच बन गई है
1: जी
0: इन करंट टाइम,
1: आज के समय में।
0: जी हाँ,
1: बिल्कुल। तो सर, जनरली टर्म की अगर हम बात करें, तो फिजिशियन और फिजियोथेरेपी सुनने में लगभग कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो सर फर्क बताएं हमें।
0: देखिए, फिजिशियन जो होते हैं वो आपके एज लाइक फैमिली डॉक्टर होते हैं, जो आपको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आगाह करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर के बच्चे के बड़े होने तक या बुजुर्गों तक, सबसे पहले रोल उन्हीं का ही होता है। फिजिशियन वो आपको मेडिसिन लिखते हैं, आपके स्वास्थ्य को जांचते हैं, आप में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका निवारण बताते हैं, आपको आगे क्या प्रॉब्लम ये बढ़ेगी तो आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में बताते हैं, मेडिसिन से लिखते हैं और गाइड कर देते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट आपके मूवमेंट के डॉक्टर होते हैं। आजकल स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई है, बुजुर्ग लोग जो घर में रहते हैं अचानक गिर जाते हैं, उनको सीढ़ियां चढ़ने उतरने में परेशानी होती है, जो लोग ऑफिस में बैठ करके घंटों तक काम करते हैं उनमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, बैकएक हो जाता है, इन इश्यूज से लोग बहुत सारे आज के समय में जूझ रहे हैं, उनको सिंप्लीफाइड करने के लिए फिजियोथेरेपी एक अच्छी ब्रांच है और आपके मूवमेंट को एनहेंस करती है
1: जी। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार जी, मैं महेश बोल रहा हूँ कोटा से, एज मेरी 67 है। डॉक्टर साहब, मेरे को L4 L5 में हल्का सा माइल्ड से मॉडरेट थोड़ी प्रॉब्लम है
0: जी।
2: अब इससे क्या है कि मेरे को पैर में झंझनाहट बनी रहती है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि अपर साइड में गर्दन से नीचे लेके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ भी हल्का सबकी रीढ़ की हड्डी के पास भी दर्द बना रहता है, हल्का हल्का। तो डॉक्टर साहब से आप मुझे, आप क्या एडजस्ट करेंगे? मैं मेडिसिन तो ले नहीं रहा हूँ, पेन किलर को नहीं देता।
0: जी हाँ, आप अपने सबसे पहले ये है कि आपकी एज 67 ईयर ओल्ड है, तो आपकी जो स्पाइन है उसमें कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस हो गए हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उम्र के साथ होने वाले बदलाव
2: जी।
0: इनमें आपके सबसे पहले अगर टिश्यूज कमजोर हो रहे हैं तो उसका दबाव आपकी नसों में पड़ेगा, नसों पे दबाव पड़ने से वो जहां जहां नर्व की सप्लाई है वो एरिया को वो अफेक्ट करेगी। तो जिससे आपकी प्रॉब्लम को मैं असेस कर पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, जो कमर के निचले हिस्से से लेकर के पंजे तक दर्द जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये करें कि आप अपने नजदीकी चिकित्सक को इसके बारे में एक बार दिखाएं, अगर वो मेडिसिन दे देते हैं और आपकी प्रॉब्लम पे काफी हद तक कंट्रोल आ सकता है तो आप वो काम करें, या फिर अपने नजदीक में कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप एक बार उनको दिखाएं और उनकी गाइडेंस के अनुसार काम करें, क्योंकि 50% रोल मेडिसिन का होता है और 50% रोल होता है आपके गाइडेंस की, आपकी सलाह के।
2: डॉक्टर साहब, ये 4 साल पहले ही हुई थी इश्यू, है ना, तब उस टाइम मैंने दिखाया था और 4-5 मैंने ट्रीटमेंट भी बुरा लिया था, उसके पश्चात मुझे मेडिकेशन की मैंने छोड़ दिया, लेकिन एक्सरसाइज जो मुझे वो बताई गई वो मैं कंटिन्यू एक टाइम करता हूँ मॉर्निंग में।
0: सर आप पोस्चर का ध्यान रखें, एक्चुअल में होता यह है कि अगर हम अपना पोस्चर सही नहीं रखते हैं तो तकलीफ जो की त्यों बनी हुई रहती है। जैसे कुछ सिंप्लीफाइड तरीके हैं, जैसे आगे झुकना, वजन उठाना, जब भी आप अपना बिस्तर छोड़े तो करवट लेकर के बिस्तर छोड़ें, सीधे नहीं उठें। सीधे उठने में क्या है कि डिस्क कंप्रेस होगी तो वो दर्द आपके नसों

0: के जरिए पैरों तक पहुंचेगा। तो वजन नहीं उठाएं, अपना वजन कंट्रोल रखें, आगे झुके नहीं, और जो भी आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं वो आप डेली रूटीन में करें।
1: डॉक्टर साहब एक इश्यू है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते डॉक्टर, थोड़ी देर बाद में फिर वही नीचे झुक जाती है कमर।
0: जी हाँ,
1: सीधा नहीं बैठ पाते।
0: तो आप इसके लिए एक लंबो सेक्रल सपोर्ट आती है, बेल्ट आती है, LS बेल्ट, वो बेल्ट लगाएं आप।
1: ठीक है
0: थैंक यू
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रोताओं, आप भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली है, और कॉल करने के लिए नंबर फिर से एक बार आपको बता देते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2941142 और कोटा शहर का STD कोड है 0744। तो सर, हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि हमारा विषय है बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं, तो सर आपके पास कौन सी ऐसी समस्याएं लेकर लोग अक्सर आते हैं जिनके बारे में आज कार्यक्रम में आप बात करना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र की रफ्तार चलती रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपके मांसपेशियों पे भी थोड़ा इफेक्ट आता है, जॉइंट्स पे भी इफेक्ट आता है, बॉडी में जो एक्टिविटी एक हेल्दी इंडिविजुअल 18 से 20 साल की उम्र में या 25 साल 30 साल की उम्र में कर पाता है, वो 50 से 55 की उम्र में बहुत डल हो जाती है। ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्सेस भी बहुत डल हो जाते हैं। जो रिफ्लेक्सेस हैं, बॉडी को सडन कोई मूवमेंट देना है या कोई एक्टिविटी है उसको सडनली, तो एक एज के बाद में वो रिफ्लेक्सेस डल हो जाते हैं, तो एक्टिविटी हो जाती है कम। तो इनको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए फिजियोथेरेपी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
2: जी, तो सर जब हम बात करते हैं रिकवरी की या असर दिखने की, तो फिजियोथेरेपी जब कोई व्यक्ति करवाता है तो कितना समय लगता है उसको असर दिखने में कि हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे आराम आ रहा है?
0: देखिए, ये डिपेंड करती है स्टेजेस के ऊपर। कोई एक्यूट कंडीशन है, सब एक्यूट कंडीशन है, या क्रॉनिक कंडीशन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग पेशेंट की रिकवरी डिसाइड होती है। कोई एक्यूट इंजरी हुई तो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में वो कंप्लीट ठीक हो जाती है, और सब एक्यूट हुई तो उसको 15 से 20 दिन या महीना भर लग सकता है, और काफी क्रॉनिक है जैसे मोर देन 3 मंथ या 3 to 6 मंथ से ज्यादा है, तो उस पेशेंट को रिकवर होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है।
2: जी, तो श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चप्पल चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी आप तक हम तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर शाकिर हुसैन। तो सर, फिजियोथेरेपी जब कोई व्यक्ति लेता है तो कई बार ऐसा होता है, जैसा कि अमूमन हम बीमारियों में वैसा करते हैं कि जब हमें आराम आता है तो हम दवा लेना छोड़ देते हैं, तो सेम चीज अगर फिजियोथेरेपी में कोई व्यक्ति करता है कि दर्द उन्हें है, फिजियोथेरेपी उन्होंने ली, आराम आ गया और फिर एक्सरसाइज छोड़ दी, तो फिर इसका क्या असर पड़ता है फिर?
0: देखिए, धीरे धीरे मसल्स की टोन जब हम इम्प्रूव करते हैं और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो मसल्स की टोन रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने से मसल्स को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो धीरे धीरे डल पड़ना शुरू हो जाती है।
2: कॉल ले लेते हैं।
0: इंजर्ड पार्ट।
2: हेलो,
3: हाँ, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग सर।
3: मैं 66 ईयर मेरी एज है, और मेरे क्या है, 10-12 साल पहले घुटनों में डायग्नोस हुआ था एक्सप्रेसिव के, इसमें गैप है
0: जी,
3: स्टार्ट हो गया गैप। तो डॉक्टर्स ने मेरे को कुछ वो बताई थी प्रिकॉशन, सीढ़ियां कम चढ़नी है, उकड़ू कम बैठना है, एक्सरसाइज करनी है
0: जी,
3: लेकिन मैं एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाया। तो अभी नाउएडेज मेरे बाएं घुटने में कुछ ज्यादा वो है प्रॉब्लम, तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये क्योर हो जाता है क्या एक्सरसाइज से, या अल्टीमेटली ऑपरेशन कराना पड़ता है? नंबर दो, मैं क्या है, सेकेंड फ्लोर पे एक बार चढ़ता हूँ, वहाँ गार्डन है मेरा, तो दिन में एक बार चढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है, रुक रुक के धीरे धीरे चढ़ता रहता हूँ
0: जी।
3: और तीसरा ये है कि ये इफेक्टिवली मेरे को एक्सरसाइज किसी क्लिनिक से करानी चाहिए कि या फिर घर पे जो सजेस्ट कर रखी है वो कर दें?
0: सर, जैसे आपने बताया मुझे कि आपकी एज 66 ईयर ओल्ड है, तो अभी आपके घुटने में इतना चेंजेस तो नहीं आया होगा कि आपका दायां घुटना ठीक है तो आप चढ़ने उतरने में एक काम करें कि जैसे बाएं घुटने में तकलीफ है तो

0: सीढ़ी चढ़ते वक्त आप दाएं घुटने वाला पैर जो है वो पहले रखें और एक एक स्टेप से चढ़ें। और एक्सरसाइजेस तो आपको डेली रूटीन में करना मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग यूँ ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी घुटने की हेल्थ मेंटेन रहेगी, जो चिकनाहट है, मसल्स की स्ट्रेंथ है, बोनी कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे। और एक्सरसाइज करने से प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज भी नहीं होगा आपको, कि जिससे जो घुटने में जो सेंसिटिविटी होती है, जो पेन डेवलप कर सकती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो आप एक्सरसाइज जारी रखें, घर पे करके देखें, यदि आराम नहीं पड़ता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके इसके बारे में एक उचित परामर्श ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सर, जैसा कि इन्होंने भी कहा, मेरे भी दिमाग में ये सवाल था और कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि कोई अगर समस्या हमें बॉडी में है, डॉक्टर ने हमें सजेस्ट कर दिया है कि आपको सर्जरी करवानी होगी, तो कितना मुमकिन है कि फिजियोथेरेपी अगर हम करते हैं प्रॉपरली तो उस सर्जरी को हम टाल सकते हैं या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: देखिए, आजकल बहुत सारे करेक्टिव ऑर्थोसिस आते हैं जो घुटनों में या बॉडी के किसी भी पार्ट को माल अलाइन होने से रोकते हैं। तो पहली चीज यही है कि इनिशियल ट्रीटमेंट में हम सपोर्टिव ऑर्थोसिस का यूज करें। जैसे कमर में भी पहले कॉलर ने बताया था, मुझे कमर में समस्या थी, तो वो अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। तो आप हमारी ओपिनियन के अकॉर्डिंग यही रहेगा कि वो बेल्ट लगाएं तो बेल्ट से पोस्चर सही रहेगा, पोस्चर सही होगा तो मांसपेशियां अच्छे से एक्टिवली अपना काम कर पाएंगी। और सेकंड कॉलर को भी मैंने यही कहा कि वो अपने घुटने में नी कैप पहन सकते हैं, जिससे जॉइंट का जो आर्टिकुलर एरिया है वो दोनों तरफ से मेंटेन रहे। मोस्टली मीडियल साइड पे ज्यादा जॉइंट में गैप आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है वो मीडियल साइड पे रहता है, तो वहां पे सबसे पहले जॉइंट में चेंजेस शुरू होते हैं, वो धीरे धीरे टक टक कट कट करके और वहां की कार्टिलेजेस को खत्म कर देते हैं। तो वहां की कार्टिलेज सेंसिटिव होने से आसपास का टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो पेन शुरू हो जाता है उसकी वजह से।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, E11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC हंडर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अपना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ है। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।
1: और श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान विषय पर, और इस विषय पर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर शाकिर हुसैन। हेलो।
4: हेलो
1: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, प्रश्न पूछे।
4: ये जो कई लोगों को लकवा वगैरह की शिकायतें रहती हैं, तो क्या उनके लिए भी ये कारगर हो सकता है क्या?
0: जी, फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस के साथ साथ शरीर के संतुलन और चलने फिरने में जो बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तो उन मांसपेशियों को एक्टिव या सुचारू रखने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है। इसमें नसों और मांसपेशियों में जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए बहुत तरीके की कसरत भी कराई जाती है और मशीन्स का यूज करके उन नसों और मांसपेशियों को एक्टिव भी किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी काफी अच्छा विकल्प है लकवे के लिए।
4: धन्यवाद
1: जी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, तो फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई मेजर इंजरी है तभी आपको फिजियोथेरेपी करनी है, तो सर ये सिर्फ मिथ है या हमारी रोजमर्रा की जो परेशानियां होती है, दर्द है, उनमें भी फिजियोथेरेपी हेल्प करती है?
0: देखिए, फिजियोथेरेपी हर तरह के दर्द में कारगर है
1: जी,
0: चाहे वो मसल से हो रिलेटेड हो या नसों से रिलेटेड हो या कोई भी इंजरी हो गई उससे रिलेटेड हो। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम हम डिसाइड करते हैं इंजरी के लेवल के ऊपर। इनिशियली अगर कोई इंजरी होती है तो बर्फ का सेक करने से वहां का जो इंजर्ड

0: पार्ट है उसकी हीलिंग जल्दी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता
1: जी,
0: तो पेशेंट को दिक्कत नहीं आती।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार,
2: ये कोटा में बोल रहा हूँ।
1: जी सर बोले।
2: ये आपने डॉक्टर साहब ने कहा फिजियोथेरेपी जो पैरालिसिस के लिए होती है
0: जी,
2: तो ये मशीनों का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में?
0: सभी जगह अवेलेबल हैं जहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर्स खोले गए हैं, तो आप
2: लेकिन मैं वहाँ गया था तो कहते कि हाथ से ऐसे बता दिया, आप मुझे 2 साल के लगभग होने वाले हैं पैरालिसिस में।
0: नहीं, उन्होंने आपको सिर्फ डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस बताई हैं
2: जी,
0: घर पे करने के लिए, जो व्यायाम आप घर पे कर सकते हैं और जो सावधानी आप घर में बरत सकते हैं वो उन्होंने आपको गाइड कर दिया, आपको बता दिया। आप उन एक्सरसाइज को नियमित तौर पे सुबह शाम दिन में 2 से 3 बार करें, आपकी जो
2: 5-7 बार कर रहे हैं।
0: जी हाँ,
2: 8 बार।
0: जी हाँ, एक बार उनके निर्देश में आप करके बताएं उनको कि आप किस तरह से कर रहे हैं, यदि आपके करने में अगर कोई खामी है तो वो उसको दुरुस्त करेंगे।
2: उनके बताने के हिसाब से किया
0: जी। आप या तो अपने एक नज़दीक में कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप उनके क्लिनिक पे 5-7 दिन आप जाएं, जो कमी आप
2: अपन जितना खर्चा वो नहीं कर सकते बर्दाश्त।
0: जी हाँ,
2: तो और मेडिकल कॉलेज ही पास पड़ता है,
0: तो आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, वहाँ के जो चिकित्सक हैं उनकी राय लें, आप अपनी प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को जिस तरह से कम कर सकते हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही करें, वो आपकी बेहतर बेहतर मदद करेंगे।
2: जी,
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। तो रोजमर्रा के दर्द में भी यानी कि हम मान सकते हैं कि ये हेल्पफुल होती है फिजियोथेरेपी। तो सर जैसा कि इन्होंने बताया कि एक्सरसाइज कई बार लंबे समय तक मरीज करते हैं लेकिन कहते हैं उन्हें आराम नहीं आ रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि एक्सरसाइज करने का तरीका इम्पोर्टेंट है, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है रेगुलर लेकिन किसी तरीके से उसने एक्सरसाइज गलत कर ली या गलत तरीके से कर रहा है, तो उसके सर क्या साइड इफेक्ट फिर हो सकते हैं?
0: देखिए, साइड इफेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं। कोई पार्ट जिसकी अगर गलत एक्सरसाइज की गई है तो वहाँ परमानेंट डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाती है। मसल्स 2 तरह के होते हैं, एगोनिस एंटागोनिस, और उनको सपोर्ट करने के लिए एसेसरी मसल्स भी होते हैं, सिनर्जेस्टिक जिसे कहते हैं। यदि दोनों में
1: एक कॉल ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
0: दोनों में अगर बैलेंस नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में बॉडी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। जब बॉडी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो जो प्रभावी रूप से जिस भी मूवमेंट को अपन एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो डल हो जाता है और धीरे धीरे वहां पे कॉन्ट्रेक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं
1: जी,
0: ये प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो स्ट्रोक पेशेंट को ये दिक्कत का सामना ज्यादा करना पड़ता है। अगर एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो रही है तो उस जगह पे जॉइंट्स में कैल्शियम जब डिपॉजिट हो जाता है तो हार्डनिंग हो जाती है टिश्यूज के अंदर और वो परमानेंटली मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है
1: जी। तो एक्सरसाइज करना तो जरूरी है लेकिन
0: सही तरीके से करना जरूरी
1: जी, बिल्कुल। इसके अलावा सर हम बात करें एक्सरसाइज की तो मैनुअल भी, जैसे किसी डॉक्टर ने बताया कि ये मूवमेंट आपको करने हैं, वो हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, तो वो किन केसेस में पड़ती है और उसका असर कितना रहता है?
0: देखिए, इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत एसेंशियल है ऐसे केसेस के अंदर जहां पे ताकत कम हो गई है, उन टिश्यूज को स्टिमुलेट करके हम स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मसल्स की पावर को बढ़ाते हैं, रिफ्लेक्सेस को इम्प्रूव करते हैं। तो मोडिलिटी वहां जरूरी है कि जहां पे आपकी मसल्स की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, जॉइंट की मोबिलिटी खत्म हो रही है
1: जी,
0: तो मोडिलिटी वहां जरूरी है। आजकल लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से लोग एक्सरसाइज पे फोकस नहीं कर पाते हैं जितना उनको फोकस करना चाहिए। तो यदि आपका नसों का पोटेंशियल लेवल कम है, नसों की ताकत कम है, तो आप मूवमेंट को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे
1: जी।
0: तो लोग वहां पे पिछड़ जाते हैं, कहते हैं कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं पर आपकी नसों का पोटेंशियल नहीं है, तो आप उस मूवमेंट को पर्पसफुली और अच्छे तरीके से कैसे कर पाएंगे
1: जी,
0: इसी लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता।
1: बिल्कुल। इसके अलावा सर दर्द की अगर हम बात करें तो सिर्फ एज फैक्टर मुझे नहीं लगता है कि अब मैटर करता है, कम उम्र में भी जोड़ों का दर्द होने लगा है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, ये सारी जो टेंडेंसीज बढ़ रही है, और अभी आपने लाइफ स्टाइल का भी जिक्र किया, तो सर हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसका कितना रोल है ये सब दर्द वगैरह को स्टिमुलेट करने में?
0: देखिए, आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो गई है, लोग अगर आपके पास फैन भी है तो उसको भी रिमोट ऑपरेटेड है, टीवी है, स्विच है, तो जब किसी को बना बनाया एक जगह पे मिल जाएगा तो वो मेहनत नहीं करेगा। यदि हमें फंक्शनल

0: लिए अच्छे तरह से इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो शरीर को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा। शरीर को चलाने के लिए एक्सरसाइज और व्यायाम बहुत ज़रूरी है, योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपनी लाइफ के अंदर योगा मेडिटेशन फिजियोथेरेपी को अपना लेते हैं वो लोग स्वस्थ रहते हैं। उनके लिए एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र सिर्फ एक नंबरों का ही खेल है
1: जी। फिटनेस का उम्र से और कोई लेना देना
0: कोई नहीं लेना है। नहीं है, लोग मैराथन में 70-70, 80-80, 90-90 साल के लोग दौड़ते हैं अपने आप को फिट दिखाने के लिए कि भाई मैं फिट हूँ। एक जज्बा और जुनून होता है उन लोगों के अंदर जो सिर्फ इसी पे काम करते हैं, कि ऐसा नहीं कि हम 60 हो गए रिटायरमेंट हो गए, लाइफ रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है आपको
1: जी।
0: आपकी जिंदगी में सुख दुख उस एज के बाद में, एक लिमिट एज तक तो आप 60 तक तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, 60 के बाद आपकी जिंदगी शुरू होती है जो आप अपने परिवार को देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और अच्छा परिवार तभी बनता है जब हम स्वस्थ होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। कार्यक्रम में आज का विषय है बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर शाकिर हुसैन। तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है, कोई जानकारी आप डॉक्टर साहब से लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए नंबर है 2941142, कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744। तो श्रोताओं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर शाकिर हुसैन से। अब सर, तकनीक की अगर हम बात करें तो कोई भी बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट में अलग अलग तरह की नई नई चीजें जुड़ती जा रही है। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो नए जमाने के साथ में क्या क्या और तकनीक ऐड हुई है जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है?
0: देखिए, इसके साथ ड्राई नीडलिंग है, कपिंग है और कायरोप्रैक्टिक है, जिससे कायरोप्रैक्टिक में यह है कि जो टिश्यू लंबे टाइम से कंप्रेस्ड हो गए हैं, जहां पे ये कहें कि कोई पार्ट ऑलमोस्ट डिफॉर्मिटी की कंडीशन पे पहुंच चुका है, तो उसको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के द्वारा उसको रियलाइन करके वहां के पेन को खत्म कर देते हैं। बट ये एक स्किलफुल टेक्निक है, एक अच्छे चिकित्सक को अच्छा मतलब प्रैक्टिस के बाद ही ये पर्पसफुल और इफेक्टिव है। तो ड्राई नीडलिंग और कपिंग आल्सो एड इन आवर प्रोफेशन, ये नई तकनीकें हैं जो जुड़ी है, जो दर्द को कम करती है और परमानेंट ब्लॉक कर देती है दर्द को।
1: बिल्कुल। तो सर, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है अपनी किसी समस्या को लेकर, तो आप सर उसकी रिकवरी को किस तरह से ट्रैक करते हैं?
0: रिकवरी का ट्रैकिंग सिस्टम यही है, पेशेंट जब आपके क्लिनिक में एंटर करता है, फर्स्ट टाइम पे उसका जो पेन का स्केल है, जिसको हम VAS वॉस स्केल कहते हैं, इसको हम 0 to 10 काउंट करते हैं। जब पेशेंट का दर्द काफी ज्यादा होता है तो हम उसको 10 काउंट करते हैं, जब धीरे धीरे रिकवर होता हुआ 7-6 जो स्कोर है वो 0 पे आ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपको ठीक होने में कितना समय लगने वाला है
1: जी। इसके अलावा सर, कोई सर्जरी अगर किसी व्यक्ति की हुई है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी कितने इम्पोर्टेंट है, क्या रोल होता है फिजियोथेरेपी का फास्ट रिकवरी के लिए?
0: देखिए, जो डिपेंड करता है सर्जरी किस तरह की हुई है। सर्जरी भी एक तो रिकंस्ट्रक्टिव होती है और एक जो आजकल लेजर इससे दूरबीन से करते हैं, तो उसमें दोनों तरफ में ये डिफरेंस है कि जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है वो उसमें रिकवरी पीरियड ज्यादा लगता है, और आर्थोस्कोपी और जो दूरबीन वाली सर्जरी है इसमें रिकवर का जो टाइम है वो कम लगता
1: कम
0: है।
1: होता है।
0: तो रिकंस्ट्रक्टिव में यही है कि आपको मसल्स को दोबारा से बिल्ड करना होता है, टिश्यूज को रिकवर करना है, तो और आर्थोस्कोपी में इतना समय नहीं लगता है, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि उसमें डैमेज कम होता है टिश्यूज का अंदर से, तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो दोनों को ट्रैक अपन इस तरह से कर सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में थोड़ा समय ज्यादा लगता है मसल्स को स्टेब्लिश होने में।
1: इसके अलावा सर, हम बात करें बढ़ती उम्र की, तो पीठ दर्द की समस्या है या गर्दन दर्द की समस्या है, फ्रोजन शोल्डर, ये सब आम है समस्याएं, तो सर इनमें फिजियोथेरेपी कितनी मददगार है, किस तरह से हेल्पफुल होती है?
0: देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की हम बात करें, गर्दन दर्द जैसे आपने बताया, तो इसमें जो व्हाइट कॉलर जो पर्सन हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनका टेलीफोनिक कॉल है या लैपटॉप पे, या बच्चे कम उम्र में भी गैजेट चलाते हैं, बुजुर्ग लोग लंबे समय तक मोबाइल फोन देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में नसें भी कंप्रेस होना शुरू हो जाती है इस प्रॉब्लम के अंदर, जिससे झुनझुनी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को

0: अपना पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। और मोडिलिटी ट्रीटमेंट में ट्रैक्शन ट्रीटमेंट है, IFT है, टेंस है, या अगर इनिशियल प्रॉब्लम है तो आइस और हॉट पैक से भी काम चल जाता है
1: जी।
0: और फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा समय देना होता है, क्योंकि ये मोस्टली डायबिटीज या किसी इंजरी के बाद में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में इनका समाधान जो है एक्सरसाइज अच्छा विकल्प है।
1: बिल्कुल सर, अभी आपने जिक्र किया हॉट पैक का और आइस पैक का, तो लोगों को ये पता है कि हाँ सिकाई करनी है हमें, और कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना डॉक्टर के परामर्श के भी जिस तरह से मेडिसिन हम ले लेते हैं अक्सर के सर्दी जुकाम हुआ, मेडिकल पर गए कोई टैबलेट ले ली, उसी तरह से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें पेन है तो हम सिकाई कर लेते हैं। तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, अगर कोई इस व्यक्ति इस तरह से कर रहा है सिकाई अपना हॉट पैक से या आइस पैक से, तो उसके सर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या जो इंजरी है उसमें फिर और कितना नुकसान हो सकता है?
0: देखिए, कोई भी इंजरी हुई ऐसी स्थिति में इंस्टेंटली अगर किसी ने हॉट पैक लगा लिया तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम और दर्द बढ़ सकता है
1: जी।
0: क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा तो पेन का लेवल बढ़ जाएगा
1: जी।
0: तो ऐसी भी स्थिति आती है जब लोग अपने तर्क के अनुसार ठंडा जहाँ करना है वहाँ गर्म कर लिया, जहाँ गर्म करना है वहाँ ठंडा कर लिया,
1: ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते,
0: वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक प्रोफेशनल और एक डॉक्टर इस चीज को सही तरीके से आपको गाइड कर सकता है। तो कभी भी कोई भी चोट लगे इंस्टेंटली हॉट पैक नहीं लगाना है, वो आइस पैक लगाना है, क्योंकि आइस पैक आपकी ब्लड सप्लाई को धीमा कर देगा, पेन के लेवल को कम कर देगा
1: जी।
0: और इनिशियली यही है कि अगर इंस्टेंट चोट लगने के बाद अगर आपने आइस पैक लगा लिया तो आपको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है
1: जी।
0: और क्रॉनिक पेन जो पुराना डल पेन है उसमें आप हॉट पैक लगा सकते हैं
1: जी।
0: ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव करेगा, जो आसपास जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं टिश्यूज में, या ये कहें कि वो पार्ट अगर डीएक्टिव हो गया तो उसको एक्टिवेट करने का काम हॉट पैक करता है। तो ब्लड सप्लाई एक्टिव रहेगी तो ब्लड फ्लो बढ़िया रहेगा।
2: विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
4: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र TPA उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
3: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
4: लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें
3: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
1: एक बार फिर से स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपसे जुड़े हैं डॉक्टर शाकिर हुसैन के साथ। कार्यक्रम में आज का विषय है बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान। और इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, फोन नंबर है 2941142, कोटा शहर का STD कोड है 0744। अब सर, बढ़ती उम्र की जब हम बात करते हैं तो जोड़ों का दर्द आम है, गठिया की प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो भी दर्द बहुत नॉर्मली हमें सुनने को आता है, तो सर आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो उसमें सर कितना हेल्पफुल होता है फिजियोथेरेपी लेना?
0: फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है, डिपेंड करता है आर्थराइटिस किस लेवल पे है
1: जी।
0: अगर स्टेज 1 स्टेज 2 पे आर्थराइटिस होता है तो उसको फिजियोथेरेपी से वेल मेंटेन किया जा सकता है, दर्द को खत्म किया जा सकता है। उसमें हम डिफरेंट मॉडलिटीज यूज करते हैं, जैसे टेंस है दर्द को कम करने के लिए, IFT है मसल्स पावर को इम्प्रूव करने के लिए, और अल्ट्रासाउंड है लोकल पेन, जहां एक्यूट पेन हो जाता है उसको खत्म करने के लिए।

0: हेलो हेलो
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं सर?
1: अरुण बोल रहा हूँ, कोटा से।
0: जी, स्वागत है आपका।
1: हाँ मैम, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न था, ये जो घुटनों में पेन होता है तो इसमें इनको ये न्यूरोपैथी, मतलब न्यूरो की वजह से हो सकता है या हड्डियों की वजह से हो सकता है, इसको कैसे डायग्नोस? दोनों में ही फिजियोथेरेपी काम करती है।
2: जी, दोनों में ही काम करती है। थोड़ा ट्रीटमेंट न्यूरो में और ऑर्थो से रिलेटेड कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है असेसमेंट के ऊपर। यदि आपके घुटने से कट कट या टक टक आवाज़ आती है, उठने बैठने में आपको परेशानी होती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी होती है, तो ये ऑर्थो से रिलेटेड है। आप कुछ मेडिसिन जो घुटनों में चिकनाहट बढ़ाती है उनको ले सकते हैं, नी कैप पहन सकते हैं, और पर्टिकुलर जिस पार्ट में आपको तकलीफ है तो आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में आप जिस पैर को आगे रखते हैं उसको थोड़ा पीछे रखें, और उठते बैठते वक्त जो है लोड आपके जिस एक्सट्रीमिटी में या जिस घुटने में है तो उस पर वजन न डाल करके आप अपोजिट वाले में डाल करके उठें, तो थोड़ा बदलाव करने से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है।
1: नहीं वो ठीक है सर, पर मतलब इसको अपन कैसे डायग्नोस करें कि मतलब ये हड्डियों का है या मतलब मांसपेशियों के न्यूरो से रिलेटेड है, उसकी वजह से पेन क्रिएट हो रहा है।
2: यदि सर
1: दवाई
2: अगर
1: जो अपन लें, तो अगर मसल रिलैक्सेंट लें या दर्द की लें, कैसे लें?
2: सर अगर दर्द अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है तो वो नसों से रिलेटेड है।
1: वो
2: यदि
1: नसों से रिलेटेड?
2: हाँ जी, यदि दर्द एक परमानेंट एरिया में स्टेबल रहता है तो वो बोन से रिलेटेड है, सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड है।
1: राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर।
2: ओके
0: जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम, ओके।
0: जी सर, तो आजकल हमारे सबके हाथ में फोन है, और जब भी कोई भी दिक्कत किसी व्यक्ति को होती है तो फटाफट से गूगल खोलता है और अपनी समस्या डाल करके समाधान ढूंढता है। तो सर, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अगर कहीं शरीर में दर्द उठा तो वो फटाफट से अपने ऑनलाइन जाते हैं और रेमेडी ढूंढ लेते हैं, कोई एक्सरसाइज ढूंढ लेते हैं। तो सर, इस तरह से ऑनलाइन अगर कोई व्यक्ति देख करके एक्सरसाइज कर रहा है तो वो कितना सही है और कितना गलत है?
2: देखिए, काफ़ी हद तक ये वीडियोस जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव तो होते हैं, बट एक बार एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाकर के आप अपना बॉडी का असेसमेंट करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर समझता हूँ मैं,
0: जी।
2: क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस के साथ में उसको सही तरीके से करने की सलाह देते हैं। यदि आपके लिए कोई चीज़ सही है या उपयुक्त है तो वो आपको यस करेंगे, और यदि वो चीज़ आपके लिए गलत है तो उसके लिए नो कर
0: जी।
2: देंगे। देख करके करने में ये
0: हेलो
2: डिफरेंस होता है।
0: जी,
2: जी
0: ओके। इसके अलावा सर, स्पोर्ट्स की हम बात करें। हेलो
3: हाँ नमस्कार,
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर?
3: संजय चौरसिया, पन्ना जिला से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश।
0: जी सर, स्वागत है आपका।
3: जी मैडम, ये फिजियोथेरेपी मानसिक रोग और आंखों के लिए कहाँ तक कारगर है और किस तरह अपन करें?
2: देखिए, मानसिक रोग में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में जो हार्मोन्स का जो लेवल जो डिस्टर्ब हो गया है वो इम्प्रूव होगा, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, तो आप कोई भी काम करेंगे तो पूरी एकाग्रता से करेंगे और बॉडी में आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को बेहतर और अच्छा और सहज महसूस करेंगे, तो आपके जीवन में एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें इस एरा से बाहर निकलने की कि मुझे फिट होना है, मानसिक और स्वास्थ्य दोनों रूपों में।
3: और सर, आंखों के लिए,
2: जी, आंखों के
3: आंखों
2: लिए,
3: के स्वास्थ्य के।
2: आंखों के स्वास्थ्य के लिए आप अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। वो अगर आपका चश्मे का नंबर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, आपको नज़दीकी से देखने में या दूर से देखने में समस्या हो रही है, तो वो आपके लिए एक बेस्ट विकल्प है।
3: थैंक यू सर।
0: जी संजय जी, थैंक यू सो मच। जी सर, स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे कि बड़े भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, कई बार खेलने के दौरान इंजरीज हो जाती है, कई बार मुड़ जाता है पैर या हाथ ट्विस्ट हो जाता है कई बार। तो सर, ऐसे केसेस में जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है उस वक्त में फिजियोथेरेपी लेना?

0: देखिए, फिजियोथेरेपी का स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा रोल है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंजरीज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक आम समस्या हो गई है, लेकिन इससे बचने के लिए मैं आपको एक उपाय बता
1: एक
0: देता
1: कॉल
0: हूँ।
1: ले लेते हैं सर। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते सर, मैं कोटा से बोल रहा हूँ। सर, पिंडलियों में एकदम से स्ट्राइक करता है और दर्द होने लग जाता है।
0: जी, तो कभी कोई चोट लगी है आपको?
2: नहीं, चोट वगैरह कभी नहीं लगी और महीने में एक आध बार होता है ये,
0: जी
2: और एकदम से रात में एकदम से स्ट्राइक करता है, फिर पूरा दिन दर्द रहता है।
0: अच्छा, तो आप दालें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या?
2: सर, मैं तो मैस में खाना खाती
0: मैस में खाना खाते हैं, तो एक बार आप ना यू अपने बॉडी में जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उससे भी ये अचानक दर्द शुरू होता है। इसको प्लांटर फेशाइटिस का पेन कहते हैं। ये सुबह बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे दिन बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। तो ज़्यादातर ये जिनमें बॉडी में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये स्टक करता है पेन।
2: सर, ये वेट के कारण भी होता है क्या? मतलब
0: वेट के कारण भी हो सकता है, और दूसरा फैक्टर यूरिक एसिड भी है।
1: और कुछ पूछना है आपको? ओके, तो सर स्पोर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे।
0: देखिए, स्पोर्ट्स में यही है कि स्पोर्ट्स में इंजरी नहीं हो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेचिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं तो
1: जी
0: आप शरीर को संतुलित बनाएं, पहले शरीर की स्ट्रेचिंग करें। शरीर के जिस भी भाग में आपको पहले से दर्द रहता है उस पर थोड़ा सा एक्टिवली अच्छा काम करें ताकि वहां की मसल्स आपकी सक्रिय रहें, एक्टिव
1: हेलो
0: रहें।
3: हेलो
1: जी, नमस्ते।
3: अच्छा, बोल रहा हूँ मैडम, मेरी 60 साल है, तो वेट बहुत परेशान करता है क्या? मोटापन कितना आना चाहिए? मतलब मेरा पैर में दर्द करता है।
0: देखिए, सबसे पहले आप अपने शरीर का वजन संतुलित करें। आप ऑयली फास्ट फूड जो चीज़ें हैं जो वजन बढ़ाती है उनका उनको लेना कम करें। शाम का खाना जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है वो उनको कम करें। शाम को सैलेड्स लें आप, सलाद लें, और रात का खाना बंद कर दें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वजन बढ़ाता है। और अगर आप घी वगैरह लेते हैं एक्सेस क्वांटिटी में तो वो लेना बिल्कुल बंद कर दें।
3: मुझे तो छाछ छाछ पसंद है, छाछ लेता हूँ ज्यादातर।
0: आप छाछ लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर रात का मील जो है आप स्किप करके उसको बंद करके सिर्फ सलाद लें।
3: मेरा एक पाँव मुड़ता नहीं है सर। है
0: वो आपके वजन की वजह से भी हो सकता है या आपके कोई पुरानी चोट हो उसकी वजह से भी हो सकता है।
3: जी, सर पतला होना फायदेमंद है नहीं?
0: हाँ जी, आप अपने आप को फिट रखिए। रात का खाना या तो आप शाम में जल्दी लीजिए ताकि
3: जी
0: आपका
3: जी
0: वजन नहीं बढ़े।
3: थैंक यू सर,
0: ओके जी।
1: थैंक यू जी सर। तो मोस्टली आज के टाइम में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है हमारे पेन की, वो ज्यादातर लाइफस्टाइल की वजह से है। तो सर, हमारी रूटीन लाइफ कैसी होनी चाहिए? किस तरह से हमें अपने फिजिकल मूवमेंट को बनाकर रखना चाहिए ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम हो?
0: देखिए, सबसे पहले सवेरे जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सवेरे जल्दी उठेंगे तो अपना रूटीन अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे।
1: जी
0: सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है। सुबह की जो धूप होती है उसमें वाइटामिन डी होता है जो शरीर में होने वाले दर्दों को रोकता है।
1: जी
0: दर्द नहीं होंगे अगर हड्डियां मांसपेशियां नसें मजबूत होंगी
1: मजबूत होंगी जी।
0: तो सुबह उठते ही सबसे पहले कोशिश करें, जैसा आपको लगता है कि मुझे गुनगुना पानी पसंद है तो गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद फ्रेश होकर के थोड़ा सा 30 to 40 मिनट्स का वॉक करें या एक्सरसाइज सेशन लें, जिसमें आप प्राणायाम, योग, ध्यान
1: जी
0: ये कर सकते हैं, और अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें जो आपको एक्टिव बनाए रखे अपने लंच टाइम तक।
1: जी
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1 का 28 विज्ञान नगर कोटा।
5: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीबी उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
4: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
5: लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें
4: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756622।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ

0: कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और सर जो चर्चा हमने की उसमें बहुत सारी काम की बातें आपने बताई, बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई और अब सर चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को या कोई ऐसी बात जो हमारी चर्चा में छूट गई हो?
1: देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ हो और मस्त हो उसके लिए आपको अपने शरीर पे काम करना होगा। यदि हम लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे तो लंबे समय तक अपनी जिंदगी को बढ़ा पाएंगे और एक अच्छा मैसेज हम अपने जूनियर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकेंगे। यदि हम खुद स्वस्थ हैं तो हम दूसरों को भी स्वस्थ रहने की सलाह दे पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग जो हमारे देश की धरोहर हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, अपने मार्गदर्शन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और देश को खुशहाल बनाएं।
0: बिल्कुल, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में और हमारे श्रोताओं से जुड़े, इतनी बेहतरीन जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज हमने बात की बढ़ती उम्र में शारीरिक समस्याएं और फिजियोथेरेपी से समाधान विषय पर और इस विषय पर बेहतरीन जानकारियां हमारे साथ साझा की डॉक्टर शाकिर हुसैन ने। और चलते चलते अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया हिमांशु नामा ने और तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र सिंह तंवर और संजीव सोलंकी का। और इसी के साथ इजाजत दीजिए निशा को कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य से। अगले मंगलवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। यमुना जल परियोजना के एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। बैठक में दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक विषयों पर निर्णायक चर्चा की जाएगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पीने के पानी की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। गौरतलब है कि यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। ये डीपीआर केंद्रीय जल आयोग के साथ भी साझा कर दी गई है। प्रदेश के सरहदी जिलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में एक निश्चित दायरे के भीतर बने निर्माण कार्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हटाया जा रहा है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा के मामले को

0: कर पूरी तरह सजग है।
1: पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी कतर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहाँ कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा न स्थायी निर्माण होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वहाँ निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है, और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है, तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन स्वीप के नाम से जो

0: संहिता यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ये समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल जयपुर में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। श्री बेढ़म ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ये समिति संभाग स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करेगी। इसके अलावा आम नागरिक वेबसाइट के जरिए भी अपने सुझाव समिति तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश को नई दशा और दिशा मिलेगी।
1: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इसे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह नेफेड के निदेशक मंडल के साथ बैठक करेंगे। हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई हज नीति 2027 जारी की। इच्छुक लोग भारतीय हज समिति की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हज समिति और निजी क्षेत्र के बीच यात्रियों के कोटे का अनुपात 70-30 का रखा गया है। इसके तहत 1,22,518 सीटें भारतीय हज समिति के पास रहेंगी, जबकि 52,000 से ज्यादा सीटें निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए निर्धारित की गई हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब द्वारा तय समय सीमा का पालन करने और तैयारियां समय पर पूरी करने के उद्देश्य से इस बार हज नीति की घोषणा जल्दी की गई है। प्रदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा तकनीक आधारित बनाने के लिए इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना बनाई गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में इस परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में न्याय संहिता डैशबोर्ड पर राजस्थान के प्रदर्शन और स्कोर्ड कार्ड की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कल ही पीएम श्री और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुगम और सिग्नल फ्री बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। जयपुर में महल रोड की तर्ज पर अब न्यू सांगानेर रोड और सीकर रोड पर भी यू टर्न आधारित सड़कें बनाई जा रही हैं। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाना और यातायात को निर्बाध बनाना है। उन्होंने बताया कि यदि यू टर्न का ये प्रयोग सफल रहता है तो इस साल के अंत तक शहर के लगभग 21 प्रमुख ट्रैफिक चौराहों यानी जंक्शनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
2: हम लगभग यू टर्न पैटर्न के ऊपर, बेस के ऊपर ही लगभग 21 ट्रैफिक जंक्शंस को हम बंद कर पाएंगे। साथ में हम और तरीके के भी बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे लोगों को अगर लेफ्ट जाना है तो उनको रेड लाइट पे खड़े ना होना पड़े। एक हमने प्रयास यहाँ पे करा था रामबाग

0: सर्कल के ऊपर और बाकी शहरों में भी। अब हमने यहाँ जेडीए सर्कल पे, जेडीए चौराहे पे भी किया है। इसके साथ साथ हम लगभग 15 जुलाई के आसपास हमने 24 जंक्शन चिन्हित करे हैं, जहाँ पे हम जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का, वहाँ से देख के, कैमरा से देख के ही लोगों को हम वार्न करेंगे। अगर कोई रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है या स्टॉप लाइन के आगे आ रहा है या बिना हेलमेट के कर रहा है, तो हम अपने स्पीकर के थ्रू ही उनको समझाने की कोशिश करेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत का पहला गीत सुनिए के और हेमा सरदेसाई की आवाज में। फिल्म का नाम है इश्क है तुमसे।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: और श्रोताओं, अगले गीत में सुनिए शाहिद माल्या को। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है, संगीत है प्रीतम का और फिल्म का नाम है मौसम।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले गीत के साथ। फिल्म कसूर का ये गीत है, आवाज़ अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: और अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म राज के इस गीत में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

और श्रोताओं, फिल्म राज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगण में आप सभी को घणो घणो स्वागत छे और लारा ही मारो घणो घणो राम राम भी छे। मुझू आपकी अनीता बणा भण्याओ कार्यक्रम में आज चर्चा एक क्षेत्र संकलित परिसंवाद जानकारी और मीठो सो लोकगीत छे। आज की चर्चा में छे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। भण्याओ आज अपन अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस का बारा में चर्चा करेंगे। यो दिवस हर साल 23 जून न मनायो जाओ छे। इनकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा करी गई थी ताकि लोक सेवा का महत्व और लोक सेवका का योगदान के ताई सम्मान दियो जा सके। बणाओ लोक सेवा को मतलब छे जनता का लेख शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता परिवहन और प्रशासन जैसी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराबो। शिक्षक डॉक्टर पुलिसकर्मी प्रशासनिक अधिकारी और भी सरकारी कर्मचारी समाज की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ छे। यो दिवस अपनी याद दिलाओ छे कि एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण में लोक सेवा को घणो बड़ो योगदान रेवे छे। ईमानदारी स्पष्टता और जनहितकारी सेवा नागरिका का जीवन के ताई बेहतर बनावे छे और समाज में विश्वास के ताई मजबूत करे छे। जनहित की राह पर जो चाले छे उही सच्चा अर्थ में राष्ट्र सेवा करे छे। बण्याओ आज अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस भी छे। पति के जाबा के बाद जीवन की चुनौतियां से लड़ रही लाखों बण्या की आवाज दुनिया ताई पहुंचावा के लेख 23 जून न यो दिवस मनायो जाओ छे। ई दिवस को उद्देश्य विधवा बण्या का अधिकारा की रक्षा शिक्षा रोजगार और सामाजिक सम्मान की दिशा में जागरूकता फैलावो छे। समाज को दायित्व छे कवे विधवा बण्या के ताई सहारो सम्मान और आत्मनिर्भर बनाबा का अवसर प्रदान करे और आपन सब भी एक अशो समाज बनाबा की कोशिश करा जहाँ पर कोई भी महिला की पहचान केवल उनकी वैवाहिक स्थिति से न हो बल्कि उनका व्यक्तित्व सम्मान और क्षमता से हो। महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित घनी सारी योजना छ जो माँ की बेणा का लेख चला रखी छ। तो माँ की अशी बेणा जो विधवा छ वो भी या योजनान को घणो सारो लाभ उठा सके छे। तो भण्याओ अपना स्वास्थ्य को भी ध्यान रखाणो और समय समय पर जानकारी लेता रहो और जानकारी लेकर और योजना को लाभ उठाता रहो। भण्याओ

0: अब आपण कार्यक्रम में सुनंगा एक क्षेत्र संकलित परिसंवाद जीको विषय छ टूटती शादियां जिम्मेदार कौन और समाधान क्या। ई विषय पर न्याली न्याली बण्या का न्याला न्याला विचार छ, तो आओ आपण भी सुना क काई खेवचारी छ ये बण्या।
1: रिश्ता धागा जैसा होवे छे, प्यार प्रेम से यही पिरोनी पड़े छे, अहंकार की एक छोटी सी गांठ सारा बंधन तोड़ सके छे, और ये रिश्ता टूटा कोई न धीरा धीरा बिखरे छे, खदी शब्दा की कमी से, खदी समझ की कमी से, और खदी सम्मान की कमी से, छोटी छोटी गलतफहमिया के कारण नरी बार पति पत्नी को रिश्तो टूट जावे छे। अशा में सवाल यो उठे छे क आखिर जिम्मेदार कुण छे, पति पत्नी सास ससुर परिवार या फिर बदलती सामाजिक परिस्थितियां। आज अपन अशा ही एक विषय पर परिसंवाद कर रहे छा जो क लगभग हर परिवार से जुड़े हुए छे। विषय छे टूटती शादियां जिम्मेदार कौन और समाधान क्या। बण्याओ रिश्ता निभावा में सभी की भूमिका होवे छे, और रिश्ता बचावा की जिम्मेदारी भी सभी की होवे छे। तो आज अपन सभी पहलुओं पर खुलकर चर्चा करेंगा और जानबा को प्रयास करेंगा क रिश्ता के ताई मजबूत बनावा कर लेख अपन काई कर सका छा, तो करा बातचीत को आरंभ ई बना सा। तो करा यहाँ से
0: राम राम। राम राम बना।
2: राम राम साहब। राम राम।
0: काय नाम छे आपको।
2: मारो नाम छे मधुबाला शर्मा।
0: मधुबाला जी, आप नौकरी भी करो छो?
2: ना पहले करे छी, प्रिंसिपल से रिटायर हो गई। अब तो शिक्षा विभाग में सीनियर हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल छी, 5 साल हो गया मारता रिटायर हुए।
0: बहुत बढ़िया बहन जी। आप से मुझे यह पूछबो चाहू छू क आपका अनुसार शादियां टूटवा को सबसे बड़ो कारण काई छे, रिश्ता में तनाव हो बापा परिवार का लोगों की काई भूमिका होनी चाहिए। जैसा आपका घर में बेटा भी होगा बेटी भी होगी, तो उमा आपकी काई भूमिका होनी चाहिए और समाज की काई भूमिका होनी चाहिए। इस विषय पर आप थोड़ा समा कताई विस्तार से बताओ।
2: रिश्ता टूटवा की तो आजकल बहुत भारी समस्या होगी। बच्चा के पढ़ावा चाह, लड़कियां ने भी पढ़ावा चाह, लड़का ने भी पढ़ावा चाह, सब पढ़ रहा है लिख रहा है समाज में सब एक्टिव छे, पर शादी का मामला में चक्कर ही पड़ रही है। तो सबसे पहले काम तो यो छे कि जब शादी करवा लागो तो बच्चा बच्चा के ताई अगर आप जो मैरिज छे वा परिवार का सहमति से कर रहे छे, तो रिश्ता परिवार आपका हिसाब से ढूंढो कि भी आपने बच्ची वहाँ सेट होगी कि ना होगी, बच्चा के ताई वह बच्ची पसंद आओगी कि ना होगी, फिर अपना हिसाब से परिवार देख लो, वहाँ का संस्कार कैसा है यह देखो, और फिर छोरा छोरा ने दोनों ने मिलाओ बातचीत कराओ, वहाँ का विचार आपस में मिले छे कि न मिले, तो वहाँ से पूछ लो कि भाई ताको सेटिंग बैठा को न बैठा को।
0: बिल्कुल हाँ। सही कह रहा जो आप, पर यहाँ सबका अलावा भी इनका बाद में भी शादियां होता ही थोड़ा घना दिन चाल चार साल दो साल में टूट जाओ छे, तो इन पर कहीं खेगा
2: मारे विचार यो छे शादी तो होगी बच्चान की, पहले तो यह होनी चाहिए कि वहाँ कोई दबाव में तो शादी न करी, बच्चान पर शादी के पहले कोई दबाव न होनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो उको घर का सब लोग सम्मान करे, भाई अपना घर में एक नयो मेंबर आयो छे, सम्मानजनक मेंबर आयो छे, तो सब ओका वेलकम करे, ओके ताई अच्छे से रखाना, और कोई भी अगर छोटी मोटी गलती भी हो जाओ छे तो घर का मेंबर की जिम्मेदारी छे तो ओके ताई नेगलेक्ट करे। आपका हिसाब से आप उन्हें सेट करो कि भाई अपना यो काम अशा नोर अशा हो जाए।
0: बिल्कुल सही
2: बात। अपना परिवार में कोई अगर मैं आओ तो आप उनको वेलकम कशा करा जा, अब उगते फैली से तो बताओ को ना, बाद में क्रिटिसाइज करो तो छोटी मोटी बात से धीरे धीरे धीरे वो बड़ी बात हो जाओ। हाँ। परिवार का हिसाब से तो यह है। हाँ। और पति पत्नी में भी यह कि भाई कोई शादी होगी तो लड़की तो लड़का कहते हैं स्वीकार करे। हाँ। और लड़को भी लड़की को पूरा सम्मान करे कि भाई अभी हमारी अर्धांगिनी होगी।
0: बिल्कुल।
2: तो पूरा सम्मान मिलनी चाहिए जो कहते हैं। हाँ। और आज का जमाना में कहें बच्चियां भी अपना हिसाब से थोड़ी बहुत रेपो छाओ छे, तो वहाँ कहते हैं वहाँ की सारी इच्छाएं पूरी करो, सारी पूरी न हो सके थोड़ी बहुत तो पूरी करो, जब बच्चान की बच्चियां की इच्छाएं पूरी न हो पावे वहाँ पर दबाव डाले हो जाओ, सामाजिक दबाव रहा परिवार को दबाव रहा, तो थोड़ा थोड़ा वो कुंठा ग्रसित होकर और वो रिश्ता टूटता में एक पॉइंट यो भी रहे।
0: बिल्कुल।
2: आज का जमाना में कहें एक शादियां भी थोड़ी लेट हो रही है।
0: बिल्कुल।
2: पहले तो कहें 20 साल की शादियां हो जाओ थी लड़कियां की, अब आजकल 20 से बढ़कर 25 और 30 टाइम हुआ लागी, तो एक छोटी उम्र में जब बच्चियां की और बच्चा की शादियां हो जाओ तो वहाँ को एडजस्टमेंट करवा को थोड़ा सा वहाँ का जल्दी हो सके।

0: मैरिज एडजस्टमेंट। तो अब जो लेट मैरिज हो रही है आजकल, यह भी एक भारी समस्या हो रही है। तो बच्चान की शादी 25 साल तय कर दा, और ये 35 साल तय शादी हो रही है, 40 साल तय शादी हो रही है, 30 साल से हो रही है, तो यह भी एक रिश्ता टूटवा को एक कारण है। और समाज में एक रिश्ता टूटवा को कारण ये मानू छू कि काना का कच्चा हो, भाई आप सासू जी छो, आप काय करेगा, खुद की बहू की बात जरा सी कहेगा, वो दूसरे पड़ोसन आ रहा उसे काय काय कह देगी। हाँ। या वहां ना जो समझी लोग काय भी छोटी सी बात की होगी दूसरी बात कह देगा। तो रिश्ता टूटबा में या काना को कच्चो वो भी एक बहुत बड़ो कारण छे। कोई कहते क्रिटिसाइज मत करो और कोई काय काय खेरो छे तो अपने अक्कल लगाओ मैं, है ना। तो मारे ख्याल में यह भी बात छे। और पति पत्नी कहते भी आपसी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, वहां कहते कोई पैसा की जरूरत है, लड़कियां भी कमारी है आजकल, या कोई ना भी लड़कियां ने कमारी, तो लड़कियां कमारी से तो वहां की जो कमाई है उसको सम्मान करनी चाहिए।
1: क्या
0: भाई हाँ यू कह, अरे सब संसारी कमारी अच्छा ना, वाह लक्ष्मी चा अपना घर की, तुमको पूरा सम्मान करनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और लड़कियां का तय भी कहे चाहे ईगो न रखनी चाहिए, मुंह अतनो कमारी चू, भाई आप दोनों परिवार का दो स्तंभ छो,
1: बिल्कुल
0: है ना, एक गाड़ी का दो बेल हो गया था तो
1: हाँ हाँ।
0: तो परिवार चलानो चाहिए, प्रेम से चलाओ। आज का जमाना में सास ससुर का तय भी, चाहे वो दामाद हो चाहे वो आपकी बहू हो, दोनों का तय पूरा सम्मान दो। और अटी उठी की बात पर ध्यान मत दो। और मारी राय में तो यही संबंध टूटवा की बात तो सोचो ही मत, जोड़वा की सोचो हमेशा।
1: बिल्कुल मधु जी, आपने माँ कहता है बहुत ही बढ़िया बात बताई कि संबंध होबा के बाद में, एक बार रिश्ता होबा के बाद में तोड़बा की सोचा ही न, तो एक सकारात्मक विचार आपने साथ रख अपनी बातचीत करता है। दाजा विराम, राम राम,
0: राम राम साहब, राम राम,
1: राम राम बना,
2: राम राम।
1: काई नाम छे आपको?
2: मारो नाम राजेश सुमन।
1: आज आपनो चर्चा को विषय छे टूटती शादियां, जिम्मेदार कौन और उपाय। तो आप सबसे पहले तो मैं यह बताओ कि आपका अनुसार शादियां टूटबा को सबसे बड़ो कारण काई हो छे?
2: शादियां टूटबा को सबसे बड़ो कारण मारा हिसाब से यो छे कि जैसा एक दूसरा की समझ में कमी छे।
1: हाँ।
2: एक दूसरा आपस में एक दूसरा की भावनाएं न समझ पा रहा।
1: हाँ।
2: और गलत फहमिया जो एक दूसरा के प्रति आ जाओ छे वो गलत फहमिया छे। और एक दूसरा के प्रति अविश्वास, अविश्वास सबसे बड़ो कारण है। एक शादी का मतलब मजबूत बनाबा के लिए एक दूसरा पर विश्वास ज्यादा जरूरी है।
1: रिश्ता में तनाव होबा पर परिवार का लोगों की काई भूमिका होनी चाहिए?
2: परिवार की तो यही भूमिका है कि परिवार ही दो पक्ष से समझनी सुननी चाहो। अगर तनाव हो भी गयो छे, अगर बेटी छे तो बेटी की भी सुननी चाहो, और आप लोग बेटो छे तो बहू की बेटा की दोया की बात सुननी चाहो।
1: बिल्कुल
2: बात सुनकर वहां जो भी कोई भी डिस्प्यूट को मतलब कारण छे वो लिए विस्तार से हर चीज कता एक दूसरा की भावना समझकर उनको डिसीजन लेनी चाहो। यू ना आप लोग बेटो छे तो आपने पक्ष लेनी, उनको पक्ष लेनी चाहो, या फिर आपने बेटी छे तो उनको पक्ष लेनी चाहो। एक दूसरा आपस में बिठाकर बढ़िया से तरीका से समझानी चाहो, जो भी लड़ाई की जड़ छे उनको समाधान करनी चाहो।
1: अब यह बताओ कहीं आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली भी वैवाहिक संबंध पर असर डाल रही है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, आजकल एक दूसरा के पास बैठबा को टाइम ही कोई ना, एक दूसरा की बात ही सुनबा को टाइम ही कोई ना, तो उसे एक दूसरा की भावना जान ही ना पा रहे आपस में एक दूसरा की। न तो लड़को लड़की की जान पा रहे हो, न लड़की लड़का की जान पा रही, कहीं अंदर का जान छे। थोड़ा बहुत टाइम मिले छे तो बस आपस में ये आठी की बात कर ले, ताकि वहां के अंदर की जो बात आ जो समस्या वो एक दूसरा की ताई समझ न पा रहा। तो ये लेयर है ना, जो एक दूसरा के ताई टाइम देनी चाहो, जब भी कोई भी मौको मिले तो टाइम आपस में एक दूसरा के साथ मिलकर पूछनी चाहो, एक दूसरा की बात ही समझनी चाहो।
1: रिश्ता न मजबूत और खुशहाल बनाबा के लेकर आपको कई संदेश चमा की बेणिया कहते
2: मारो? तो यही संदेश है कि आपस में एक दूसरा पर विश्वास करनी चाहो और एक दूसरा को सम्मान करनी चाहो। बहम ज्यादा कर रहा चाहे लोग कोई भी बात लेकर बहम ज्यादा चाले, बहम की दवा तो कहीं भी कोई ना, है ना। तो बहम न करनी चाहो एक दूसरा पर, कोई भी बात आ गई आप ही पतो चाल रहे हो तो उनकी जड़ तक जानी चाहो कि भाई काई बात है। पहले दूसरी हवा में जो भी बात आ रही है तो उन पर कतना भी विश्वास न करनी चाहो, इससे तो परिवार बिल्कुल ही टूट ही रहा है ज्यादा से ज्यादा। सबसे बड़ी समस्या है अहम की भावना ज्यादा भरी हुई है लड़का में भी लड़की में भी। अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ गयो लड़को तो मैं अहम आ गयो, दूसरे सामने वाले कताई कमजोर समझे। अच्छा ही लड़की थोड़ी आगे पढ़ लिखी तो लड़का ही कमजोर समझ ले, इसलिए ईगो न होनी चाहो। आपस में एक दूसरा की जो भी समस्या है जो भी परेशानी है आपस में एक परिवार का जैसा रहनी चाहो, आपस में ईगो न होनी चाहो एक दूसरा के अंदर। यह सबसे बड़ी समस्या है आजकल परिवार टूट पाएगी।
1: सही कह रहा छो और मैं आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगे। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: आप अब एक और बहन से बात

0: आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद भी अगर शादी के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो उनको आपसी समझदारी के साथ ही उन चीजों को सुलझाना चाहिए और दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर काम करें, परिवार के दूसरे सदस्य भी एक दूसरे की हेल्प करें तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तालमेल अच्छे से बना रहेगा।
1: बहुत बढ़िया मेघा, आप सब बातचीत करके मैं बहुत बढ़िया लगे। राम राम।
0: राम राम, धन्यवाद।
1: अपनी एक बेटी भी यहाँ पर बैठी हुई दिख रही है जो का एक ननद भी छ और शादी लायक उम्र की भी छ, तो अपन यहाँ सभी बातचीत करेगा अपना ही विषय पर जो कछ टूटती शादियाँ, जिम्मेदार कौन और समाधान क्या। राम राम बेटा।
2: राम राम।
1: काई नाम छ आपको?
2: प्रियंका गौतम।
1: विवाह का बारा में आपकी काई सोच छ? आप काई सोचो छो कि विवाह कशा होनी चाहिए, खीसा होनी चाहिए?
2: विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का और बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाने वाला संबंध है, जिसे मुझे लगता है कि जब आप पूर्णतया शादी के लिए तैयार हो, पूर्णतया हर तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, तो आपको शादी जरूर करनी चाहिए। और अगर आप अभी मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं हो, आपके मन में कोई शंकाएं हैं किसी भी तरह की, तो आपको विवाह अभी नहीं करके रुककर सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़कर जब आपके मन में आपके दिमाग में सारी समस्याओं का हल मिल जाए तो फिर आपको विवाह आगे करना चाहिए।
1: आप कशा व्यक्ति से विवाह करवो पसंद करेगा, उमें काई काई गुण होनी चाहिए?
2: गुण जो मैं चाहूंगी कि मैं जो सामने वाले को दे सकूं, जैसे कि एक विश्वास का बंधन, एक रिश्ता जिसमें विश्वास हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य हो, क्योंकि आज की जो जेनरेशन है उसमें सभी वर्किंग है, लड़की भी वर्किंग है लड़का भी वर्किंग है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन यानी कि सामंजस्य बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि वो मेरी रिस्पेक्ट भी करे, केयर भी करे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है विश्वास। हर रिश्ते में विश्वास जरूरी है, तो उसको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए, प्लस हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, मुझे ऐसा अपने लिए एक रिश्ता चाहिए।
1: एक सफल विवाह की नींव काई हो?
2: सफल विवाह तो आपके दिमाग में होता है, आपके व्यवहार में होता है। जब तक आप एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे कि ये आपके माता पिता हैं, तो वैसे ही मेरे भी माता पिता हैं, हम दोनों को एक दूसरे के परिवार को मान सम्मान और इज्जत देनी पड़ेगी। इसी के साथ आज की जनरेशन में हम देखते हैं कि दोनों वर्किंग है, आप भी आर्थिक रूप से सक्षम हो, लड़की भी आर्थिक रूप से सक्षम है, तो दोनों मिलकर सिर्फ आर्थिक या जो सामाजिक व्यवहारिक रिश्ते हैं वही नहीं निभाने हैं, हमें एक दूसरे के साथ घर में भी यही काम करना है। जेंडर स्पेसिफिक काम नहीं होना चाहिए कि ये काम तो महिलाओं का ही है, पुरुष थोड़ी ना करेंगे। हाँ। या ये काम पुरुषों का ही है, महिलाएं नहीं करेंगी, तो ये वाली जहां सोच आ जाती है वहां संबंध बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सोच नहीं लाके दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलजुलकर काम करना चाहिए कि लाओ तुमने बर्तन साफ कर दिए तो मैं जमा देता हूं, उसमें क्या हो गया। संबंध इस तरह का हो तो शादियां ज्यादा अच्छी चलती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। एक युवा पीढ़ी रिश्ता के ताई मजबूत कशा बना सके?
2: रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको सम्मान मान के साथ साथ आर्थिक जो इंडिपेंडेंसी है, आप भी कमा रहे हो मैं भी कमा रही हूँ, वो हम दोनों को मिलकर सारे खर्चे निभाने पड़ेंगे, और आपके मम्मी पापा या मेरे मम्मी पापा ना होकर हमारे माता पिता होना चाहिए। साथ में एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मेरा और तुम्हारा, यानी कि जो अहम हो जाता है हमारे बीच में कि ये तो आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये आप खर्च करोगे मैं करूंगी, इस तरह के विचार नहीं आएंगे तो रिश्ता बहुत अच्छा निभेगा। ये हम दोनों का पैसा है, हम मिलकर अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख आपका है और पूरा 1 लाख मेरा है, इस तरह की सोच जब हम रखेंगे तो रिश्ता बहुत अच्छा निभेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। आपसे आखिरी मैं यह पूछना चाहूंगी कि आप एक ननद भी छो, तो ननद की भूमिका काई होनी चाहिए परिवार में, यह भी मैं बताता चलूं।
2: सबसे पहले किसी भी ननद का रिश्ता भाभी से होता है, तो भाभी को सबसे पहले अपनी सहेली समझें, उसके बाद अगर आप समझें या ना समझें, भाभी में एक माँ का रूप भी होता है, माँ के बाद आपकी भाभी ही होती है जो आपको माँ जैसा प्यार दे सकती है, तो आप सहेली बनकर रहेंगी उनके लिए, एक बेटी बनकर भी रह सकती है, लेकिन अगर संबंध आप बहन या सहेली जैसे रखेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। प्लस ननद होने के नाते मैं ये कहूंगी कि अगर माँ कहीं पर गलती कर रही है तो माँ को भी टोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन माँ है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही भाभी को भी गलत बता दो। तो जो गलत है उसको गलत बताएं, अगर भाभी सही है तो उनका सहयोग करें।

0: और अगर आपकी माँ गलत है तो उनको टोके, उन्हें बताएं कि आप यहाँ पर गलत हैं। और भाभी भी अगर गलत हो तो आप एक सहेली बनकर, एक दोस्त बनकर या फिर एक तरह से बहन बनकर आप उन्हें समझाओ कि यहाँ आप गलत हो, आपका ये व्यवहार गलत है। प्रेम प्यार से और तहजीब और सलीके से आप एक बहुत अच्छी ननद और एक बहुत अच्छा भाभी और ननद का रिश्ता निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल बेटा, आपने बहुत अच्छी बात माँ कताई बताई। आप किससे बात करके माई बहुत बढ़िया लगे। राम राम।
0: राम राम साहब। राम राम।
2: भण्यो, टूटती शादियां एक गंभीर समस्या छे, पण हर समस्या को समाधान भी छे। पति पत्नी एक दूसरा की भावना न समझे, परिवार का सदस्य सहयोग करे और विवाद को समाधान बातचीत से निकालवा को प्रयास करे तो शायद यह समस्या थोड़ी कम हो सके छे। आओ आपन सब भी यो संकल्प ला कर रिश्ता तोड़ंगा कोई न बल्कि जोड़वा को प्रयास करंगा।
3: बण्यो, आभार आपन न सुनियो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम परिसंवाद छो टूटती शादियां, जिम्मेदार कौन और समाधान क्या, और अब टेम छ जानकारी को। जानकारी में छ महिलाओं का स्वास्थ्य ही उसकी पूंजी। स्वस्थ नारी सुखी परिवार की पहचान, उनकी सेहत म बस छ पूरा समाज को सम्मान। बण्यो, महिला परिवार और समाज की रीढ़ होवे छ। वे अपना परिवार की देखभाल में अपनी सेहत और स्वास्थ्य के ताई नजरअंदाज कर जावे छ। पर सच तो यही छ कि महिला का स्वास्थ्य ही वहाँ की पूंजी छ। अगर महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी तो ही वह अपना परिवार, कार्य क्षेत्र और समाज की जिम्मेदारी के ताई बढ़िया तरीका से निभा पाओगी। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, समय समय पर स्वास्थ्य की जाँच और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखान वो हर महिला का लेखा जरूरी छ। तो बण्याओ स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और बण्याओ अब अपन कार्यक्रम में एक मीठो सो लोकगीत भी सुन लेवा। तो सुनायो मीठो सो लोकगीत रेखा राव की आवाज में।

बनाओ अपना कार्यक्रम को आज को टाइम तो यहाँ ताई छ, फिर अगली बार मलंगा नई नई जानकारी और नया नया लोक गीता कलारा। तो आज तो दो इजाजत चला जा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। अब श्रोता आनंद लेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट,

अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है, हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे

0: जी
1: आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं। तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
0: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
1: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर। तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
0: जी तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जाँच पद्धति है?
1: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
0: जी
1: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
0: जी और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
0: ये जो देश है मेरा।
1: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
0: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे। तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को।
0: जी,
1: फिर 4-5 साल उधर काम किया। फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10%

0: दिन भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में, पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है. तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है. पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए. उसके बाद और नई दवाइयां, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं जिससे फैटी लिवर भी कम होता है, लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है. अमेरिका में 2 और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है. आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस. तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है सुरेश कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है. मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं. स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है. तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए. अगेन, बिना दवाई के हो सकता है. मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो. अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं.
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं.
0: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर, स्ट्रेस, वो हैंड इन हैंड. आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं. मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी. तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है. फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग. हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म. तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है.
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को ले, 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2 से 3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए, वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर, फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा.
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को.
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ. थोड़ी बीट सुनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना.
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है.
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं

0: तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है
1: जी। तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
0: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
1: ओके,
0: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
1: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हफ्ते में 2 दिन, थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन, चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके 2 जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादा कर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए, हम शाक

0: कार्य तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हैं। इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं, ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी, हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ, लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज

0: तो हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
0: जी, जी, जी.
1: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
0: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
1: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
0: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: Correct.
0: और वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया
0: चल छैया छैया, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट

0: करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
1: जी जी।
0: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: जी, लेकिन वो आदत न डालने, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपेरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहां से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में।

0: एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला गीत। आवाज नरेंद्र चंचल की थी, फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी,
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: बेगम अख्तर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कजरी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की

0: बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू गव्वाल की आवाज में ये गव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
3: ये हुस्न वाले भी कैसा कमाल।

0: ज्ञानी बाबू कव्वाल और उनके हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में अमीर खुसरो की ये रचना।
1: शिकायत कभी न की लबों पे सा।
0: और ये आवाज है विशाल मिश्रा की। आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और आदित्य सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि

0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारू मारे देश, राजस्थान की जबान है ये केसरिया, महबूब से मुखातिब है।

केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। मेहदी हसन की आवाज में अभी आपने ये मांड गायकी सुनी और इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि ये नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहाँ के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थी। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने

वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत

0: जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल चल, अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: страшных.
1: Как? Знаете?
2: Андрей, пацанты!
3: बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही।

0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति?

0: अपना पहाड़ सर पर उठा रखा है। मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। हाँ? वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
0: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
0: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
0: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चल चल।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
2: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झूला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित

0: करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ
1: और क्या
0: है।
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
0: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
3: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
1: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
4: चलो
1: चलो।
4: हाँ
1: जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, हीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी गोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

रविंद्र जैन का संगीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं, आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ी। फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: वाह प्रभात, वाह, बहुत रवि, तालियां उनके लिए, मजा आ गया, कमाल कर दिया, थैंक यू।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे।

0: हमारे फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। यमुना जल परियोजना के लिए एमओयू पर राजस्थान और हरियाणा के बीच सहमति बन गई है। आज नई दिल्ली में एमओयू को अंतिम रूप देने

0: के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री पाटिल ने बताया कि इस एमओयू पर अगले सप्ताह हस्ताक्षर किए जाएंगे।
1: आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। अन्य मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे। इस तरह का अभी आज तय हुआ है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही जल बंटवारे की समस्या समाधान के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा।
2: यमुना के पानी की मांग लंबे समय से हो रही थी और 94 का ये जो फैसला है वो आज बैठ करके हमारे सभी अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमओए उसका होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है वो राजस्थान का हिस्से का पानी इसमें मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद माननीय पाटिल साहब को और माननीय हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूं।
0: यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जोधपुर के एम्स और पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने पावटा अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के मामले में ये दौरा किया है। श्रीमती राठौड़ ने एम्स में भर्ती दो और पावटा अस्पताल में भर्ती छह प्रसूताओं के स्वास्थ्य और उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को सभी मरीजों की 24 घंटे निगरानी करने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों और आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में आवश्यक तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों पर रक्षा पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है। हनुमानगढ़ में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात हुई। वहीं पिछले दिनों से जारी प्री मानसून गतिविधियों से लोगों को चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिली है। हालांकि उमस वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर लगभग सभी जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष प्री मानसून गतिविधियां अच्छी रही हैं। 1 से 21 जून के बीच प्रदेश में सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को खेलों के माध्यम से फिटनेस, शांति, एकता और भाईचारे के लिए प्रेरित करना है। इस साल की थीम यू कैन डू दिस, लेट्स मूव रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और उभरती प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: दो ना।
1: कर लो इंतजार, आएगा वो दिन थोड़ी देर है।
0: कब आएगा? अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: जी तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को, जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है, छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदें और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बाद

गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रूमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों को हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं, ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाती का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का ये रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं, जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी, तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है, या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहां बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुनाई नहीं। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया, आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं।

उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुनीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

सुन के मत वाले काले बादलों का शोर।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राजकपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छत्री प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छत्री धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है, यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके, और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे, तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल, आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपके कुछ गीत हमारे गीतों से, हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी

पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है। और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया, और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं, यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा के दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, SD बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना। Tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip t

जी, टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप, कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना। अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी

तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहां 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहां तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई है, देखते हैं हमारे शहर में कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहां बारिश हुई कि नहीं, और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है, क्या बात है। हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाई आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे? आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिये, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं, एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि वे आज कुछ ऐसे गीत है जहां इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारे बरस रही हो और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हो तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रहली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान है तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ, हम तो आपसे पूछ ही रहे कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ, छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहां बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला न जाए, तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की

होटल है, टिफिन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था। तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है। लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है, लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि। लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार एमपी में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था।

देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये गाना देवानंद और आशा पारेख के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में, लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात दो घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से

आजकल क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए। हाँ, संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की भूल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़े। ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू।

क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, फिर उन्हें चांदनी में ढालकर फूला नहीं समाता है। लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को जलाए रखना चाहिए।

अंधेरे की अपनी जिद है और जुगनुओं की अपनी जिद। सूरज बनने की जिद करो और जो ना बन सको सूरज, तो जुगनू बनकर छोटा सा सूरज अपने अंदर उगाकर अंधेरे से लड़कर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बनो। जुगनू जब रात की काली चादर पर टिमटिमाना शुरू करते हैं तो अक्सर अंधेरे में भटके को उम्मीद के सूरज तक पहुंचने का एक सिरा मिल जाता है और वो जुगनू अपनी रोशनी खोने तक उस भटकते प्राणी की उंगली पकड़ उसे सुबह की शफक रोशनी तक पहुंचा देते हैं।

हमारे सपने मन की मुट्ठी में रखे जुगनू ही तो हैं। माना जुगनू सूरज नहीं हो सकता और ना सूरज जुगनू हो सकता है, फिर भी सपनों के जुगनू हर सूरज की मुट्ठी में है। हर जुगनू अपने अंतस के सूरज से चमकता है, वो चमकता है फिर बुझता है और फिर चमकने लगता है। निरंतर ये क्रम जारी रहता है। जुगनू कभी सूरज की तरह तेज ना चमक पाने पर निराश होकर अपनी चमक नहीं खोता, वो तो बस अपने को पूरी तरह से स्वीकार कर अपने आसपास के अंधेरे से निरंतर लड़ाई जारी रखता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के

0: वो नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैराब का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
5: नाफेड ने एक प्रकार से नैफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74

0: लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया।

0: आया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: तो बता छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे के। फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत एस एन त्रिपाठी का है।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: पुराने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी है और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: की सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो, बहुत सारी बातें भी हैं, तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती की। हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी?
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन भी लेकर आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत। हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी। वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती, लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया चोरी,
1: बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीजें उपयोग करते ही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माय फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माय स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ ही SCW.DOSJE.GOV.IN जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
0: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर

0: डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
0: और आरती देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास न हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजीत, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना हो
1: खुद ही फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घुसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है
0: जी।
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में से एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी

0: शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुनकर के तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं, इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है। और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का,
0: बिल्कुल, पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है। लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: बिल्कुल। और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद है वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है। क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो, है ना?
0: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए। जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम, तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा संगीत सुन लेते हैं।
2: है अगर नजरों से नजर शर्माते हो क्यों, जुम्मन कहा
3: दुनिया कह कर नजरों से नजर टकराते हो क्यों, जुम्मन कहा
2: मिलती है अगर नजरों से

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए। हाँ। आग में घी डालने वाली बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्रोता?
0: साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती कि आग आज में लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होती है। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित रखे,
1: समझाने करें। ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: समय हो चला है एक अंतराल का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम

0: चार बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
2: अब बताओ तुम क्या करते?
1: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

घूमता आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम

0: बुद्धिमत्ता एआई को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि एआई को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्रशेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी एआई तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करनी
1: है। बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोड़ना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुड़ जाता
1: था। यानी हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे, और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसकी उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या? हाँ,
1: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था, क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
0: तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी
1: ये
0: भर जाए।
1: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी, सभी के घर आंगन, जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहाँ पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे।
0: और देखो ना, हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे, आस पास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर करते थे, तो बहुत मजा आता था।
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत याद है। और हमारे साथी क्या,
1: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे।

0: प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
1: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी। इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारे मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यही बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौवारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई है। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहाँ धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
1: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यही बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यही हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था।

0: था और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था,
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे, तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी।
1: और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना मजे करना और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका यह होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में, ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो भी काट के सब लोग
1: तो मतलब जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो चाहे खाना पीना हो चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का,
0: आनंद उठाते हैं गीत,
1: बिल्कुल गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया,
1: इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: आतिश श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 इंतजार है तेरी। फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर हमसा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
3: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया।

0: हकीकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
1: शुरू हो गई मतलब आप कहने लगे।
0: हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
0: मेरे लगे। अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम।
0: हाँ तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी उनको वो

0: एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम
0: हाँ, तो वो, हाँ तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका भी मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की?
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है।
1: क्या बात है।
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है जख्म भरते ही
0: जी।
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है
0: जी जी।
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसेटिव प्राणी है
0: जी।
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप के।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
0: चल रही थी।
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
0: जी।
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे, और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ
0: जी।
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
0: जी,
1: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं, लड़की
0: जी जी जी।
1: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ
0: जी।
1: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में, तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
0: जी।
1: उसके बगैर मुमकिन नहीं है क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
0: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है, वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
0: क्या बात है,
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर,
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
0: वाह,
1: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
0: वाह वाह वाह।
1: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
0: जी,
1: हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
0: हाँ,

0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है, दर्द मोती है।
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं नानी की जबान से सुनी हुई, वो कहानियां नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है याद है।
1: बताइए कोई किस्सा बताइए नानी का।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है।
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था उस जमाने में, टीबी लाइलाज था
1: जी जी,
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी मामू से। अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से, एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था, जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनियात कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ,
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में।
1: जी, सूरत में। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी,
0: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की
1: जी, शीनकाफ निजाम भी आया था इसमें।
0: शीनकाफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है।
1: कुंडली आपकी पता है। लेकिन अभी श्रोताओं तो कुछ सारी तो,
0: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीनकाफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी, सब जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
1: जी,
0: मुल्क
1: जी,
0: में
1: जी।
0: संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था।
1: हाँ।
0: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं
1: जी जी।
0: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई, तो लोकल

0: कल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे,
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है सामईन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरी था।
0: हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी, जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे

0: कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था, हाँ। जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, हाँ। है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर, नहीं करते।
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब हाँ। मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं, हाँ। अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी, जी।
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी, जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं, हाँ। हर शहर में जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने जी।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात है, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं, और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो।
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका, उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात तो नहीं पता।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था।
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी

0: अस्सी तक
1: भीड़
0: भीड़ और अस्सी तक आया है।
1: आर्टिकल
0: 15 थप्पड़ अनेक ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का तथास्तु का कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
1: जी।
0: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
1: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी। अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया। उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ। वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है।
1: जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: व्हाट्सएप नंबर।
0: हाँ, तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना। रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है। तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार फिर,
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी, जी।
0: तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने जी। ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला।

0: उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना बनारस में। जब भी आप जाएं और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम मिंटू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया। वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: और रेखा भारद्वाज भी थे उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब। और वो गजल बड़ी फेमस थी तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम मीर, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहां इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी
1: है?
0: भी जैसे तू है, है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे, और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है, और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी।
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर।
1: वाह।
0: ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना है, पहली लाइन एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।

0: रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही न हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

एफ एम 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 kHz पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं और अब समय है हमारे युवा श्रोताओं के खास कार्यक्रम युववाणी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा इवनिंग शो युववाणी, जहां आज आपके साथ होंगे आपके दो रेडियो दोस्त, मैं निकिता
1: और मैं राहुल।
0: तो दोस्तों, आज शाम के 6 बजे तक आपको हमारा साथ देना जरूर है, क्योंकि हम लेकर आए हैं युववाणी कार्यक्रम में आज आपके लिए बहुत कुछ खास।
1: बिल्कुल, और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी मस्ती से, कुछ जानकारी से, कुछ जरूरी सूचनाओं से और बहुत सारे गानों से।
0: बिल्कुल, लेकिन फिलहाल राहुल, मैं तुम्हारा ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगी जहां हमारे शहर की जान बसती है, यानी कि हमारे शहर की खूबसूरत शाम।
1: अच्छा, तो फिर देर किस बात की, चलिए ले चलते हैं हमारे श्रोताओं को शाम पे। तो शुरू करो कि आज किस बारे में बताओगी कि शाम में ऐसा क्या देखा है खूबसूरत तुमने निकिता?
0: बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं हमारे इस कोटा की खूबसूरत शाम के बारे में बात करती हूँ ना, तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जबान पर शब्द होते हैं, लेकिन वो शब्द उस खूबसूरती को इतने अच्छे से बयां कर पाने में भी सक्षम नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा। और मतलब देखो ना कि हर बार ऐसा होता है ना कि मई का जो ये महीना है, ये होता है स्पेशली गर्मी का महीना, जब गर्मी होती है, चिपचिपाहट होती है, लेकिन इस बार का जो महीना है, जो जून का महीना है, मई का महीना रहा है, वो पता ही नहीं लगा कि कब गर्मी से बारिश में कन्वर्ट हो गया है। मतलब ऐसा लगता है ना कि सुबह हम लोग उठते हैं तो सूरज की वो गर्मी रहती है, लेकिन शाम को जब हम लोग घर आते हैं तो घर आते टाइम बादलों की ऐसी लगता है

0: जैसे मानसून ही आ गया है।
1: मतलब शाम होते होते जो ये नेचर जो है ना, ये भी हमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे गिफ्ट जरूर दे
0: बिल्कुल
1: जाते हैं।
0: देता
1: और
0: है।
1: अगर इसी बीच में जो है बारिश हो जाए तो कहना ही क्या,
0: कहना
1: हमारे
0: ही।
1: शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते
0: और
1: हैं।
0: वो बारिश अगर घर में बैठने के बाद हो और हाथ में चाय की प्याली हो तो फिर
1: बिल्कुल,
0: चार चांद ही लग जाते हैं।
1: क्योंकि शाम का समय है और ऐसे में हाथ में चाय की प्याली ना हो और कानों में जो है वो आकाशवाणी कोटा के रेडियो चैनल से आती हुई आवाज ना हो तो फिर क्या ही बात
0: क्या ही बात है। वैसे अभी जो श्रोताएं हमें सुन रहे हैं,
1: है।
0: मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी अभी चाय की प्याली हाथ में ही लेकर हमें सुन रहे होंगे।
1: बिल्कुल। और कुछ नहीं भी सुन पा रहे होंगे, कुछ हाथ की मतलब किसी के हाथ की चाय या फिर हाथ में चाय की प्याली नहीं भी होगी तो मैं यकीनन ये मान के चल सकती हूँ कोई अपने घर को लौट रहा होगा, घर पर आने
0: बिल्कुल
1: की तैयारी कर रहा होगा, तो उसी बीच रास्ते में हमें सुन रहा होगा।
0: बिल्कुल, उसका अकेलापन हमसे बात करने से ही, हमें सुनने से ही दूर होता है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम आपसे यही कहेंगे कि सुनते रहिए, एंजॉय करिए, और फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे आपके रेडियो सेट।

0: तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में, जहां आज आपके साथ हैं आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
1: और मैं निकिता। वैसे राहुल, कभी ना कभी हम सभी ने ना मतलब एक चीज फील की है, और वो ये कि हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी अपने को दूर जाते हुए जरूर देखा है। और तब ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारी जो जिंदगी है वो थोड़ी थम सी गई है, या फिर यूं कहें कि बिल्कुल रुक सी ही गई है।
0: निकिता, मुझे ये लगता है ना कि ये सभी के साथ हुआ है। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से हर इंसान इस फेज से गुजरा है, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जिसके बिना हम अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये होता है, हम जिन लोगों के साथ अपना दिन बिताते हैं, अपना समय बिताते हैं, अपनी रोज की जो है यादें शेयर करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो व्यक्ति हमारे लिए किन मायनों में मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है हम ये खुद भी नहीं जानते, लेकिन उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें हमें फील होती है
0: क्योंकि उनकी बातें, उनकी आदतें, उनका साथ, मतलब जो हमारा जो डेली रूटीन है ना उसका एक हिस्सा बन जाता है, वो एक पार्ट बन जाता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है निकिता।
1: बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और ये भी तो देखो कि जैसे कि मान लो जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है या मेरा कोई दोस्त है वो दूसरे शहर में चला गया, या फिर हमारा कोई ऐसा रिश्ता है जो पीछे छूट गया, किसी भी कारण से वो पीछे छूटा हो, लेकिन वो छूट गया, या फिर कोई अपना जो है वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया, तो ऐसे में होता है ना कि मन भारी सा हो जाता है। और अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ रहा ही नहीं,
0: पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन मैंने एक बात हमेशा महसूस की है निकिता, कि जीवन में ना किसी का भी कोई भी इंतजार नहीं करता है। और गौर करने वाली बात ये है ना कि हमारे दुख चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, सुबह फिर भी होती है, दुकान पर वही रौनक लगती है।
1: लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि कोई अपना हमसे रूठ जाता है, या फिर कोई रिश्ता छूट जाता है, कोई अपना दूर हो जाता है, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही फील होता है ना राहुल।
0: एक इस गाने जैसा ही।

0: हम ये चाहते तो हैं कि ये वक्त ठहर जाए, वो जो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे अपने हैं, हम जिनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे पास रुक जाए, ठहर जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना। समय जो तुमने कहा
1: है ही नहीं।
0: जो तुमने कहा ना कि समय एक सा कहाँ रहता है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, लोग जो हमसे मिले हैं वो कभी ना कभी हमसे दूर जरूर जाएंगे। अब ऐसे में देखो ना, यहाँ पे एक चीज गौर करो कि ये जो दुख है ना हमारा, कोई हमसे रूठा है, दूर हो गया है, तो ये चीजें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो हमारी जीवन में, लेकिन एक चीज यहाँ पे और है जो हम गौर कर सकते हैं। सुबह फिर भी हो रही है, जितनी भी मतलब हमारे जो मार्केट्स हैं, हमारे जीवन है, दुनिया है, वो सब चल रही है। बच्चे वैसे ही खेल रहे हैं जैसे वो रोज खेलते हैं, सड़क पर वही चहल पहल रहती है और दुकानों पर वही रौनक रहती है, और दुनिया जो चल रही है वैसे ही अपनी रफ्तार से दौड़ती
1: रहती है। वो चेंजेस सिर्फ हमारे लाइफ में होते हैं, मतलब वो और किसी की लाइफ में नहीं होते। और जीवन भी हमें हर दिन यही बात सिखाता है निकिता, कि रुकना प्रकृति का नियम नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम रुक जाएंगे, बट दुनिया वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। अब नदी को ही देख लो, उसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी चट्टाने क्यों ना आ जाए, वो बहना छोड़ती है
0: नहीं,
1: वो अपना

0: रास्ता बदल लेती है लेकिन रुकती कभी नहीं है।
1: और राहुल ये बात ना हम इंसानों पर भी लागू होती है,
0: बिल्कुल होती
1: क्योंकि
0: है।
1: हम क्या करते हैं कभी कभी एक इंसान की कमी को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारे जीवन में जो बाकी चीजें होती है ना, जो खूबसूरत होती है, हम उन्हें देखना ही भूल जाते हैं कि हमारे आसपास है इतनी चीजें हम जिन्हें देख सकते हैं, अपना सकते हैं, हम उन चीजों को कहीं ना कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं।
0: अभी देखो ना कि जैसे घर में माँ की आवाज आ रही है,
1: बिल्कुल,
0: पिता की चिंता है, भाई बहनों की नोक झोंक है, दोस्तों का साथ या फिर अपने सपनों की दुनिया, ये सब हमारे पास होते हैं लेकिन हम इनकी वैल्यू नहीं करते उस टाइम जब ये हमारे पास होते हैं। लेकिन दुख के समय हमारी नजर उनसे हट जाती है, जबकि ऐसा होना चाहिए ना कि हमें उनको बराबर वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पछताने से कुछ होता ही नहीं है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ एक छोटी सी बात मुझे और याद आ रही है। देखो जब अपन स्कूल में थे, हम छोटे छोटे थे, तो मन में हमेशा ये रहता था कि जो क्लासमेट्स हमारे हैं, जो दोस्त हमने बनाए हैं, हम इनके साथ उम्र भर रहेंगे, इनका साथ हमारे साथ उम्र भर रहेगा। और यही हमारा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं भ्रम था, क्योंकि जब स्कूल खत्म हुआ और हर किसी ने फिर अपनी अपनी राह पकड़ ली, क्योंकि सबको अपना अपना प्रोफेशन चूज करना होता ही है।
0: बिल्कुल सही है।
1: तो ऐसे में जो है कि कुछ लोग हमसे सालों तक नहीं मिले अब, या फिर हमें जीवन भर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जीवन तो चल रहा है ना। हम जहाँ सोचते थे कि जिन दोस्तों के बिना हम जिंदगी नहीं बिता पाएंगे, हम पूरे जीवन भर साथ रहेंगे, आज मतलब हम कहीं उनसे मिल भी नहीं पाते, तो फिर भी हमारा जीवन चल रहा है।
0: लेकिन ये ना हर फेस में होता है निकिता, मतलब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो वैसे वैसे हमारी सोच भी बढ़ती जाती है, और बाद में जब हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो महसूस होता है कि उस समय जो बिछड़ना बहुत बड़ा लगता था ना हमें, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो ना कोई भी इंसान हमसे मिले अब वो हमें कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, सीख देके जाता है। कोई हमें हंसना सिखाता है, कोई धैर्य रखना सिखाता है, कोई संघर्ष करना सिखाता है, कोई रिश्तों की कीमत हमें समझाता है।
0: बिल्कुल। अब अभी देखो ना कि पतझड़ का मौसम, अब पतझड़ आता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं। अगर वो पेड़ ये सोचकर, जस्ट एग्जाम्पल की तरह सोचते हैं हम, कि अगर वो पेड़ भी ऐसा सोच ले कि अब तो सब खत्म हो गया है, तो क्या वो फिर से हरा भरा हो पाएगा? अगर वो होपलेस हो जाए तो क्या वो वापस से बढ़ पाएगा, वापस से हरी पत्तियां उस पर आ पाएगी?
1: लेकिन होता क्या है, वो इंतजार करता है, क्योंकि मौसम बदलता है, उसे पता है मौसम बदलेगा, फिर से नई कोपले जन्म लेगी। और हमारा जीवन जो है वो भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि कभी कभी वो जो खालीपन थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में आता है, वो मतलब ऐसा होता है कि वो नई शुरुआत के लिए ही अपनी जगह बना रहा होता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये खालीपन पूरी जीवन तक हमारे साथ चलेगा, या फिर इसी खालीपन के सहारे हम अपना जीवन बिता लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। लेकिन उस टाइम की सोच इंसान की वैसी ही हो जाती है कि हाँ नहीं, अब नहीं वो होगा। पर हम में से पता है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अतीत को पकड़कर बैठे रहने वाली, जिनमें आदत होती है, वो बार बार सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति आज भी साथ होता तो क्या होता। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई फोर्स कर रहा है, वो लोग अपनी लाइफ खुद ही डैमेज करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन अगर और काश पर बिल्कुल नहीं चलता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर चलता है और आगे भी चलेगा। अब देखो आज जो हमारे पास है वो हमारा सबसे बड़ा सच है, और अगर हम किसी सच्चाई को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा है, क्योंकि अगर इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लें और इसी के अनुरूप हम हमारे जीवन में आगे आने वाली मुश्किलों को कह दें, या फिर जीवन को बिताने की तैयारी को कह दें, वो करें, तो यही तो सबसे बड़ी समझदारी होगी।
0: समझदारी है, और ये प्रैक्टिकल बनना है, और लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी निकिता, क्योंकि किसी के चले जाने का दुख मिटाना आसान नहीं होता, ये सब जानते हैं, किसी के लिए आसान नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: और शायद पूरी तरह मिटता भी नहीं है,
1: क्योंकि वो जीवन भर कहीं ना कहीं दिल के कोने में वो कमी रहेगी,
0: पर समय के साथ हम उस दुख के साथ जीना सीख जाते हैं, और यही जीवन की खूबसूरती भी होती है कि छाव रहते हैं लेकिन उनसे मिली सीख, उनकी छाप जो रह जाती है, लेकिन उनसे जो सीख हमें मिलती है वो हमारे साथ हमेशा रहती है, वो लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती
1: और
0: है।
1: यूं कहते हैं ना कि जो घाव एक बार व्यक्ति को मिल जाए वो उसके पास जीवन भर रहेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करे कि उसी को जीवन भर लेकर बैठा रहे तो ये तो गलत है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जैसे प्रकृति अपने आप को चला रही है वैसे उसे भी अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश तो करनी है। तो इसीलिए दोस्तों हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप आज किसी की कमी महसूस कर रहे हैं ना, तो उनकी यादों को आप अपनी कमजोरी मत बनाइए, आप उन्हें अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि आप जब उनके साथ बिताए अच्छे पल याद करेंगे ना, तो उनसे मिली हुई जो सीख है जीवन भर, उनसे जो आपने सीखा है, अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो ये एक तरीके से उनके प्रति सम्मान भी होगा और आपका जीवन भी अच्छा होगा इससे।
0: और बिल्कुल, जो लोग हमें सच में चाहते हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनकी याद में अपनी

0: तरीकों को खराब कर दें या बर्बाद कर दें कि हम उनकी याद में आगे ना बढ़ें। वो यही देखना चाहेंगे ना कि हम हमेशा मुस्कुराएं, आगे बढ़ें, नए सपनों को देखें और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश
1: क्योंकि
0: करें।
1: राहुल अभी ये बात देखो कि हम भी नहीं चाहते कि जो हमारे प्रियजन हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पीछे से वो दुखी हों, दुखी
0: बिल्कुल नहीं
1: रहें या
0: चाहेंगे।
1: मुस्कुराना छोड़ दें, जीवन जीना छोड़ दें। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम आज हैं उनके साथ तब भी वो खुश रहें, हम नहीं होंगे तब भी वो
0: तब भी
1: खुश
0: वो
1: रहें।
0: खुश रहें।
1: हमारी यही इच्छाएं रहती है। तो मतलब ये देखो कि जीवन को हम एक तरीके से सफर के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जैसे
0: बिल्कुल
1: हम किसी सफर पे निकलते हैं तो शुरुआत में कुछ लोग हमें मिलते हैं। ट्रेन का ही सफर ले लो, कुछ पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही रहेंगे, कुछ दूसरे से चौथे या पांचवें स्टेशन तक ही हमारे साथ रहेंगे, और कोई हमारे साथ पूरी मंजिल तक भी साथ चलेंगे। तो जीवन
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही तो है।
0: बिल्कुल। लेकिन हर व्यक्ति हमारी जीवन की कहानी में एक नया चैप्टर बन के आता है। चैप्टर खत्म हो सकता है लेकिन कहानी नहीं,
1: ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहानियां तो
0: अनगिनत है।
1: अनगिनत है, और हमें भी अपना जीवन कुछ ऐसा ही बनाना है। तो इसी बात के साथ हम आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अपनी यादों को आप संजो कर रखिए, अपने प्रियजनों के साथ यादें बनाइए, जितनी आप बना सकते हैं बनाइए, रिश्तों की कद्र कीजिए, लेकिन अपने कदम कभी मत रोकिए। क्योंकि ये तो सत्य है कि जो हमसे आज मिला है सफर में, वो कभी ना कभी हमसे बिछड़ेगा जरूर। तो
0: बिल्कुल
1: इसी को हम ये मान के नहीं चल सकते कि हम वहीं अपनी जिंदगी रोक दें, हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है।
0: बिल्कुल। और जीवन हमें आगे बढ़ने की नई समझ और नई ताकत देता रहता है। ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं देगा। अगर दुख भी आया है तो उसको झेलने की ताकत भी आप में आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मुस्कुराइए, सीखते रहिए और जीवन को खुलकर जीते रहिए। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए और इसके साथ जिए।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: वैसे राहुल, हर इंसान की जिंदगी में ये देखो कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कहानी जरूर होती है ना, जिससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल, सबकी लाइफ में ऐसा कुछ कोई होता है।
0: ये तो देखो कि कभी किसी का जो है संघर्ष हमें हिम्मत देता है कि हमें भी करना चाहिए, या फिर कभी किसी की सोच ऐसी होती है जो हमारे जीवन को एक नई ही दिशा दे जाती है।
1: बिल्कुल, और निकिता, इसलिए आज हम लेकर आए हैं हमारा खास सेगमेंट भी, मेरी प्रेरणा, जहाँ बात होती है ऐसे ही लोगों की और ऐसी ही कहानियों की जिनसे हमें जीवन की छोटी बड़ी सीख मिलती रहती है।
0: तो चलिए दोस्तों, आज की प्रेरणा से हम मिलते हैं मेरी प्रेरणा सेगमेंट में। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे महान विद्वान व्यक्ति की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसका ज्ञान, उसके विचार और उसका आत्मविश्वास होता है।
1: तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान ऋषि की जिनका शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जिनकी बुद्धि और ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे, और वो है महर्षि अष्टावक्र जी।
0: और आज के समय में जहाँ लोग अक्सर बाहरी सुंदरता और व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन महर्षि अष्टावक्र से हम ये समझ सकते हैं कि जो असली सुंदरता है वो सिर्फ बाहरी सुंदरता और व्यक्तित्व में बिल्कुल भी नहीं है।
1: और बहुत सारे लोगों ने तो इनका नाम सुना भी होगा निकिता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि महर्षि अष्टावक्र जी जो थे ना, इनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से वक्र यानी कि टेढ़ा था, और इसी कारण इनका नाम ही अष्टावक्र पड़ गया। लेकिन इनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि बचपन से ही दोस्तों ये वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे।
0: अब दोस्तों, आप

0: सोच रहे होंगे ना कि जन्म से ही इनका शरीर ऐसे अष्टवक्र यानी कि आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया, तो उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी है इसके बारे में। कहते हैं कि एक बार उनके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे जब अष्टावक्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था, और गर्भ में रहते हुए ही अष्टावक्र ने उनके पिता के उच्चारण की गलती बता दी थी। ये सुनकर उनके पिता क्षण भर के लिए क्रोधित हो गए और भूलवश उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर आठ स्थानों से टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने उनकी गलती बताई तो वे गर्भ में आठ बार इधर उधर घूमे थे, जिस वजह से उन्होंने उन्हें आठ जगह से टेढ़े मेढ़े होने का श्राप दे दिया।
1: सोचिए दोस्तों, जन्म से पहले ही ज्ञान की ऐसी क्षमता, मतलब अभी के टाइम पर तो ये सब सोचना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीवन ने उन्हें आसान रास्ता नहीं दिया। उनके सामने शारीरिक चुनौतियां थी, लोगों के ताने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी।
0: और फिर आता है उनके जीवन का दूसरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रसंग, और वो ये कि जब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो वहां मौजूद विद्वान जितने भी थे उन्होंने उनके शरीर को देखकर उनका मजाक बनाया और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन हुआ ये कि अष्टावक्र वहां पर और भी जोर से मुस्कुराने लगे, और तब राजा जनक ने पूछा कि आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं ये समझ रहा था कि यहाँ विद्वानों की सभा है, लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग बैठे हैं जो शरीर देखकर निर्णय लेते हैं, ज्ञान देखकर नहीं। और उनके इस जवाब से पूरी सभा शांत हो गई।
1: बहुत ही सही बात, मतलब कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। और इसके बाद दोस्तों अष्टावक्र और राजा जनक के बीच जो ज्ञान की चर्चा हुई वही आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और दोस्तों ये ग्रंथ आत्मज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाता है। अगर आज की भाषा में कहें तो अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान, हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा ज्ञान, ना कि हमारा रंग रूप।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ना राहुल, ज्ञान है अगर हमारे पास तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को मतलब खड़े रख सकते हैं, हम कहीं भी डगमगाएंगे नहीं वहां पे। अब यहाँ देखो ना कि सोशल मीडिया का आज का दौर है, अब ऐसे में लोग अपनी तस्वीरों और बाहरी छवि पर बहुत ध्यान देते हैं। तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि कोई कहीं घूमने जाता है, वहां की पिक्चर्स फटाफट से अपलोड कर देते हैं, या फिर घर में कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसे लगता है कि शायद और व्यक्ति उसके मुकाबले में ये काम नहीं कर रहे होंगे, तो भी वो उसकी फोटोज फटाफट से अपलोड कर देता है। खुद की अच्छी अच्छी फोटोज हम सभी यही करते हैं कि हम अपलोड करते हैं।
1: निकिता जाने से पहले ही स्टेटस स्टोरीज अपलोड होने लग जाती है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन
0: होने वाला है। तो ऐसे में जो है लोग एक दूसरे को देखकर भी अपनी छवि पर बहुत ध्यान देते हैं, दूसरों को जज करते हैं। तो वहीं पे अष्टावक्र जी का जीवन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि आपके भीतर ज्ञान है, आत्मविश्वास है, तो दुनिया की कोई कमी आपको कभी छोटा नहीं बना सकती।
1: बिल्कुल, और महर्षि अष्टावक्र जी के जीवन से दोस्तों हमें तीन बड़ी सीख मिलती है। पहली, कभी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। दूसरी, परिस्थितियां कैसी भी हो अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, सच्चा ज्ञान इंसान को विनम्र और महान बनाता है।
0: और एक और रोचक तथ्य कि यहाँ पे राहुल हम बात करें तो वो ये है कि अष्टावक्र जी ने बहुत कम उम्र में ही विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, और उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा जो है वो सभी ने माना। और सचमुच उनका जीवन अगर हम देखें ना, तो वो इस बात का प्रमाण है कि शरीर की जो सीमाएं होती है ना, वो मन और ज्ञान की उड़ान को मतलब कभी नहीं रोक सकती।
1: निकिता, मुझे ना एक और प्रसंग याद आ रहा है जो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि दोस्तों एक बार क्या हुआ था ना कि जब कृष्ण भगवान की सभा हो रही थी, तो निकिता तुम भी ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें नहीं पता हुई ये स्टोरी। तो ना एक बार क्या हुआ था, एक बार कृष्ण भगवान की सभा हो रही थी, वहां पे राधा जी भी उपस्थित थी। तो अष्टावक्र जी उस सभा में आए तो राधा जी को देखकर वो मुस्कुराए, राधा जी मुस्कुराई उन्हें देखकर। तो जब उन्हें लगा कि राधा जी उनके टेढ़े मेढ़े शरीर का उपहास उड़ाकर उन पर मुस्कुरा रही हैं, तो वो क्रोधित हो गए। और पहले के ऋषि जैसे श्राप देते थे, तो उन्होंने क्रोधित होकर, और वो श्राप देने ही वाले थे कि राधा जी हमेशा के लिए बूढ़ी हो जाएंगे, ऐसा श्राप वो देने वाले थे। लेकिन श्री कृष्ण ये सब बात समझ गए, तब उन्होंने अष्टावक्र जी को रोका और उन्होंने बोला कि आप कुछ भी करने से पहले एक बार राधा जी से पूछिए कि वो आप पर मुस्कुराई क्यों है। तो राधा जी ने बताया कि वो उनके कुरूप शरीर पर नहीं, बल्कि उनके अंतरात्मा और छिपे हुए परम ज्ञान

0: को देखकर मुस्कुरा रही थी, वो प्रसन्न हो रही थी। ये सुनकर अष्टावक्र जी का क्रोध शांत हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने राधा जी से कहा कि मैं तुम्हें बुढ़ापा कभी नहीं छू पाने वाला वरदान देता हूँ। और तुम जानती हो कि तुमने राधा जी का नाम सुना होगा, और हम
1: बिल्कुल,
0: सबने
1: हम
0: सुना होगा
1: सबने सुना है।
0: कि किशोरी जी, तो वो नाम उन्हें यहीं से मिला कि इसी वरदान के कारण आज भी राधा रानी को संसार में किशोरी जी या फिर किशोरिया के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, देखो
1: बिल्कुल, और सीख भी
0: भगवान।
1: हमें यहाँ पे मिल रही है। और वो ये सीख ये कि दोस्तों, हम जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो पहले हम उसका चेहरा देखें, उससे पहले हमें उनके विचारों को जानने की
0: और मतलब
1: कोशिश
0: आपके
1: करनी
0: ज्ञान
1: चाहिए।
0: से आप देखिए भगवान से भी बड़े हो गए, आपने भगवान को एक तरह से वरदान दिया है ये सब चीजें। तो मतलब सोचने वाली बात है, ज्ञान आपको कहाँ पहुंचा देता है, किस शिखर पे आपको बिठा देता है।
1: इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले, और हम भी ये ध्यान रखेंगे कि हम भी जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो उसके चेहरे से पहले उसके विचारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छे विचार और ज्ञान हमेशा जीवित रहते हैं।
0: बिल्कुल। और अब निकिता, इसके बाद एक अच्छा सा गाना भी हमारे श्रोताओं को सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के

0: स्तर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और ले चलते हैं आपको नॉलेज कॉर्नर की तरफ,
4: जहां नॉलेज कॉर्नर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष दिवस की जो समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोक सेवकों को समर्पित है, और ये दिवस है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस।
3: तो निकिता, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताओ कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है?
4: ये दिवस जो है कि हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, जिसे हम आज मना रहे हैं, और इसका उद्देश्य लोक सेवा के महत्व को उजागर करना है और समाज के प्रति समर्पित लोक सेवकों के योगदान को सम्मान भी देना है।
3: बिल्कुल श्रोताओं, लोक सेवा किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। सरकारी अधिकारी हो गए, कर्मचारी और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े लोग हो गए, नागरिकों तक सेवा पहुँचाने का कार्य करते हैं।
4: और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जल आपूर्ति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक सेवाएं लोक सेवकों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है।
3: और बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन क्यों की थी ये हम आपको बताएंगे।
4: वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, और इसका जो उद्देश्य था वो था प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना।
3: बिल्कुल, और ये दिवस केवल सम्मान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर प्रशासन और जन सेवा को प्रोत्साहित करने का भी एक माध्यम है।
4: बिल्कुल सही कहा राहुल, क्योंकि ये दिन जो है ना, हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत और संवेदनशील प्रशासन समाज के विकास के लिए कितना जरूरी है।
3: बिल्कुल, और लोक सेवक आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, चाहे किसी भी गाँव को देख लो, वहाँ की पेयजल व्यवस्था हो, या किसी भी शहर में स्वास्थ्य सेवा का संचालन हो, हर जगह इनकी भागीदारी होती ही होती है।
4: बिल्कुल, और आज जो तकनीक ने लोक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बना दिया है, और ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को अनेक सरकारी सेवाएं जो है वो घर बैठे भी उपलब्ध हो पा रही है,
3: और संकट के समय उनका योगदान और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या अन्य आपात परिस्थितियों में लोक सेवक दिन रात काम करके लोगों की सहायता करते जा रहे हैं।
4: और अब देखो ना कि ये जो लोक सेवा दिवस है, इसका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य अगर हम कहें कि युवाओं को भी जनसेवा के लिए प्रेरित करना है, तो वो गलत नहीं होगा।
3: बिल्कुल नहीं,
4: क्योंकि अब जब युवा प्रेरित होंगे तो वे समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी एक अहम भूमिका भी निभा पाएंगे।
3: बिल्कुल कहा, और जब युवा प्रशासन, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में रुचि लेने लगते हैं ना निकिता, तो देश के विकास को एक नई ही दिशा मिलती है। क्योंकि जो युवाओं के विचार होते हैं वो काफी नए होते हैं, मतलब वो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी काफी नए होते हैं।
4: तो आज के इस अवसर पर हम उन सभी लोक सेवकों को धन्यवाद करते हैं जो समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
3: बिल्कुल, और भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोक सेवकों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार भी काम करना पड़ रहा है। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी उन्हें संकल्प लेते हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक बनकर एक बेहतर समाज और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान जरूर देंगे।

0: वैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि नॉलेज कॉर्नर में ये सिर्फ इतना ही होगा, हम आपसे ऐसा कहेंगे, लेकिन हम आपसे ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज जो है नॉलेज कॉर्नर में हम आपके लिए और भी कुछ खास लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी

0: चिंतक और राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, क्योंकि आज है दोस्तों इनकी पुण्यतिथि और इनके पुण्यतिथि के इस अवसर पर इनके जीवन और योगदान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे।
1: तो दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया और मात्र 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने।
0: और दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के बाद उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने स्पष्ट विचारों और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे।
1: और स्वतंत्रता के बाद वे भारत की पहली केंद्रीय मंत्री परिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: हाँ, हालांकि बाद में कुछ नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय हितों और देश की एकता जो है इनकी जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और दृढ़ नीति अपनाई जानी चाहिए।
1: वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसने चलकर आगे भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण जगह प्राप्त की और वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक भी बने।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, डॉक्टर मुखर्जी केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षाविद और दूरदर्शी विचार कर्मी भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। और दोस्तों उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों को महत्व देते हुए आधुनिक शिक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाने पर भी बल दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं 1953 की, जब जम्मू कश्मीर के एक आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
1: और हिरासत के दौरान 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया था और उनकी मृत्यु भारतीय राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है।
0: और उनकी पुण्यतिथि हमें उन विचारों, संघर्षों और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद दिलाने का अवसर प्रदान करती है।
1: साथ ही ये प्रेरणा भी हमें देती है कि ईमानदारी, साहस, शिक्षा, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण के साथ समाज और देश की सेवा भी की जा सकती है।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा और जन कल्याण के प्रति समर्पण की एक प्रेरक गाथा है और उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनके आदर्शों को याद करते हुए देश के विकास और एकता के लिए कार्य करने का हमें संदेश मिलता है। फिलहाल इसी संदेश के साथ ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी निकिता और
1: राहुल की आवाज में।
0: और दोस्तों अब आपको ले चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट विज्ञान धारा की तरफ, जहां हमारा आज का जो विषय है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। निकिता, अंतरिक्ष की बात होते ही हबल टेलीस्कोप का नाम याद आता है, लेकिन आजकल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है मार्केट में। आखिर ये है क्या?
0: ये जो हम बात कर रहे हैं ना राहुल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी बड़ा नाम है, जिसे ज्वेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि JWST इसका शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है।
1: क्या बात है?
0: और इसे ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास, तारों, आकाश गंगाओं और दूर स्थित ग्रहों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था।
1: मतलब जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों आपको बता दें कि इसका नाम नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स ई वेब के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों ये परियोजना नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार की गई है,
0: और इसका प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट द्वारा किया गया था। वर्तमान में ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज बिंदु 2 यानी कि L2 पर काम कर रहा है।
1: और दोस्तों एक बात आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका 6.5 मीटर चौड़ा मुख्य दर्पण, जो कि 18 षटभुजाकार खंडों से बना हुआ है। इसकी मदद से ये अत्यंत दूर स्थित खगोलीय पिंडों का अवलोकन भी कर सकता है।
0: इसके साथ ही इसमें 5 परतों वाली विशाल सनशील्ड लगी हुई है, जो इसे सूर्य की गर्मी से बचाती है। ये दूरबीन मुख्य रूप से इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश में काम

0: करती है।
1: और दोस्तों इंफ्रारेड तकनीक के कारण ये धूल और गैस के बादलों के पार भी देख सकती है, जिससे कि वैज्ञानिक तारों और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन भी लगातार कर पाते हैं।
0: जेम्स वेब एक प्रकार मतलब कहें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाश गंगाओं को देखना और ये समझना है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास आखिरकार कैसे हुआ।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा ये दोस्तों बाह्य ग्रहों यानी कि एक्सो प्लैनेट्स जो होते हैं उनका भी वायुमंडल का भी अध्ययन कर रहा है, जिससे कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की ना खोज में वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा सहायता इससे मिल रही है।
0: इस दूरबीन के द्वारा जो भेजी गई तस्वीरें हैं उनसे वैज्ञानिकों को कई नई जानकारियां मिली है। इसकी तस्वीरों में अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश गंगाएं और तारकीय संरचनाएं भी दिखाई देती हैं।
1: और दोस्तों जेम्स वेब ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों विशेष रूप से की बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का भी विस्तृत अध्ययन किया है।
0: भविष्य में वैज्ञानिकों को ये उम्मीद भी है दोस्तों कि ये दूरबीन ब्रह्मांड की उत्पत्ति विकास और जीवन की संभावनाओं से जुड़े अनेक रहस्यों पर से पर्दा उठाएगी।
1: कितने गर्व की बात है निकिता। तो श्रोताओं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विज्ञान और तकनीक की एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है जो हमें ब्रह्मांड को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही है और यही इसे मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक बनाता है। फिलहाल हो चला है टाइम आज के लास्ट सॉन्ग को सुनने का, तो निकिता ले चलते हैं। बिल्कुल,
0: और श्रोताओं को सुनवाते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपसे बातें करते करते, जानकारियां साझा करते करते, समय का कब मैं ये कह सकती हूँ कि लास्ट एंड ही आ गया, हमें पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों से बातें ही इतनी होती है कि समय का ध्यान ही नहीं रहता है।
0: बिल्कुल, और बातें करने में हमें अच्छा भी बहुत लगता है, और उम्मीद

0: करते हैं दोस्तों, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक जो भी जानकारियां पहुंचाते हैं और जितना भी मनोरंजन हम साथ में मिलकर करते हैं।
1: फिलहाल हमारी घड़ी की सुइयां हमें इशारा दे रही है कि हम अपने दोस्तों से विदा लें। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों आपके साथ थे आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
0: और मैं निकिता।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसे सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि

0: मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनिए फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत में आप आनंद लेंगे राज बब्बर अभिनीत फिल्मों के गीतों का।

श्रोताओ, आपका फिल्म संगीत कार्यक्रम में स्वागत है और आज का मैं आपका रेडियो होस्ट ईशान आपका ढेर सारा स्वागत करता हूँ। श्रोताओ, आज के इस फिल्म संगीत में हम एक खास शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे और उनके गीतों से भी आपको आनंदित करेंगे। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं किस अभिनेता या अभिनेत्री की बात कर रहा हूं? लीजिए मैं आपको बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं राज बब्बर के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी कला से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। श्रोताओं, राज बब्बर एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और राजनेता हैं, जिनका जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में हुआ था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय का प्रशिक्षण लिया है और हिंदी और पंजाबी सिनेमा में अपनी सशक्त और बहुमुखी भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले राज बब्बर इंसाफ का तराजू और निकाह जैसी फिल्मों के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज जिन अभिनेता के बारे में हम आपको बता रहे हैं उनका पहला गीत आप सभी के लिए। श्रोताओं, जो पहला गीत है वो है आप तो ऐसे नहीं थे, इस फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने और लिखा है निदा फजली ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

उनकी शानदार फिल्मों में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। तो लीजिए चलते हैं उनकी ही अभिनीत एक और फिल्म के इस गीत की ओर। श्रोताओं, अगला जो गीत है वो फिल्म निकाह से है, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने, लिखा है हसन कमाल ने और संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सी का से शुरुआत की श्री राज बब्बर ने। इंसाफ का तराजू सन 1980 में, निकाह 1982 में और आज की आवाज 1984।

0: श्रोताओं, राज बब्बर ने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राजनीति में सक्रिय रूप से भी शामिल रहे हैं। राज बब्बर ने 1970 के दशक के अंत में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचान हासिल की। उनकी शुरुआती उल्लेखनीय फिल्मों में इंसाफ का तराजू, जहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और निकाह, जहां उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की थी, शामिल है। राज बब्बर अक्सर अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन करते हुए गहराई और भावनात्मक जटिलता वाले पात्रों को चित्रित करते थे। लीजिए राज बब्बर की एक और बेहतरीन फिल्म अभिनीत का ये गीत। श्रोताओं, ये जो गीत है ये फिल्म एक बार फिर निकाह से है, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने और लिखा है हसन कमाल ने, संगीत दिया है रवि ने।
1: आने कहां फिर मुलाकात हो, क्योंकि

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी सुनिएगा, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: अरे ज्ञानचंद, तुम बोतल हाथ में लेकर कहाँ भागे जा रहे हो, वो भी इस वक्त?
1: अब क्या बताऊँ हरी भाई, तीन दिन से पेट में गड़बड़ हो रहा है, एकदम से प्रेशर बनता है। इस वक्त भी प्रेशर बहुत जोर से बना हुआ है, इसीलिए भागकर जंगल जा रहा हूँ।
0: तो क्या तुमने अपने घर में शौचालय नहीं बनवाया?
1: कैसी बात करते हो हरी भाई, घर में और शौचालय? शिव शिव शिव शिव शिव, घर में शौचालय बना लिया तो घर की रिद्धि सिद्धि चली नहीं जाएगी।
0: ये भी कोई बात हुई ज्ञानचंद? अरे अपने सेठ धनालाल को ही ले लो, उनके घर में एक नहीं चार चार शौचालय बने हुए हैं, और आज उनके घर में किस चीज की कमी है बताओ?
1: लेकिन हरी भाई।
0: अरे देखो ज्ञानचंद, अब लेकिन बेकिन छोड़ो और अपने घर में शौचालय बनवाओ। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने घर की औरतों के बारे में सोचो। और अब तो घर में शौचालय बनवाने के लिए सभी ग्राम पंचायतें अनुदान भी देती हैं।
1: ठीक है हरी भाई, मुझे आपकी बात सही लगती है, मैं आज ही सरपंच जी के पास जाता हूँ और इसकी सारी जानकारी लेता हूँ। लेकिन अभी तो मैं चलता हूँ।
0: अरे लेकिन
1: में जोरों से गुड़गुड़ हो रही है।
0: अरे शौचालय जरूर बनवा लेना।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं पर्वतों

0: और समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई, राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ, किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजना के MOU से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही किशाऊ बांध परियोजना पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर श्री पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना को दीर्घकालिक नजरिए के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पानी को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे वितरण व्यवस्था व्यापक होगी। उन्होंने कहा कि केशाऊ बांध परियोजना के बारे में 6 राज्यों के मुद्दों का समाधान हुआ है, जल्दी ही MOU भी किया जाएगा।
2: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया MOU करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो MOU का उनको एक्सचेंज करेंगे।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना शेखावटी क्षेत्र के लिए अहम है, जल्द से जल्द इसे धरातल पर लाया जाएगा। वहीं श्री सैनी ने कहा कि बैठक में वर्षा के पानी को सहेज कर राजस्थान पहुंचाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज करौली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पांचना संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और अन्य पंच पटेलों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहे। उधर पांचना बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का महापड़ाव आज भी जारी रहा। वहीं धरने के कारण कुछ समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जयपुर में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में रियायती दरों पर जमीन आवंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जोधपुर के उम्मेद अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूताओं, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा

0: निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि हर मरीज को बेहतर और सुरक्षित इलाज उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन को चिकित्सालय के प्रति भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल एसओपी की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
1: इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: गौरतलब है कि पावटा अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रभावित प्रसूताओं के इलाज और सेहत की सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट देने के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद आज जयपुर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने शहर में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की। इस कार्रवाई में 14 कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को सील किया गया, साथ ही 24 कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों की अनुपालना के लिए नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार CUET पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एनटीए के अनुसार इस साल मई महीने में हुई प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नेफेड के नीलामी पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने अगले 2 सालों में दलहन की खरीद सीधे किसानों से खरीदने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने किसानों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने और आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। अलनीनो संकट के संभावित असर से निपटने के लिए आज उन्होंने कृषि मंत्रियों और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को समय पर स्पष्ट सलाह पहुंचाने की बात कही।
3: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: राज्य में आज कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून गतिविधियों का

0: असर देखने को मिला। सीकर, झुंझुनू और करौली में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार छा गया, साथ ही बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू में कई स्थानों पर करीब आधा घंटे तेज पानी बरसा। उधर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, राजियासर और अन्य कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। भरतपुर में भी धूल भरी आंधी चली, उसके बाद कुछ देर हल्की बरसात हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज, वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 जून तक जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। दक्षिणी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि देश की महान विभूति डॉ मुखर्जी के प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास पर डॉ मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का त्याग और राष्ट्र प्रथम का संकल्प देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भरतपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित किया।
1: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ, किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। जून का महीना अब अपने अंतिम चरण में है। इसी के साथ जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिछले दिनों कई क्षेत्रों में हुई बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई जगह मौसम सुहावना हो गया, इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियां तेज कर दी हैं। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था का काम चल रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। विभागीय अधिकारियों को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जल संरक्षण, जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर जिले में अनेक गतिविधि आयोजित की गयी। आइए भीलवाड़ा जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में इस चिट्ठी में जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ जिले के किसानों को भी मिला। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों ने

0: बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती किसानी के कामों में सहायक साबित हो रही है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, पशुपालन, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने हुरुड़ा पंचायत समिति के खारी का लांबा ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पशुपालकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। अगले दिन गांव में भ्रमण कर लोगों से सीधे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू करने, खेल मैदान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े कामों की घोषणाएं की गयी। ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं और सुझावों से प्रशासन को अवगत कराया। जल संरक्षण को लेकर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी। लोगों को जल बचाने और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टा वितरण, पेंशन संबंधी काम, प्रमाण पत्र, चिकित्सा सेवाएं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार इन शिविरों की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन को राहत मिली है। परिवहन के क्षेत्र में भी भीलवाड़ा जिले को हाल ही में नई सुविधाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जिले में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों के माध्यम से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। ई बसों के चलाए जाने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जिले में प्रशासन और लोगों की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मॉनसून में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लगभग 35 लाख पौधे लगाने की योजना पर चर्चा की गई है। वन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां हुई। जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आमजन को योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर सू पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहलियां आज री खास खबरां यमुना जल परियोजना रे क्रियान्वयन ने लिए नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावा ने लेर विशेष अभियान चलाया गया नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ काश्तकारासु सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अल नीनो प्रभाव सु कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपाया माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया समाचारा रे साथे मैं संगीता शर्मा रवे समाचार विगतवार यमुना जल परियोजना रे क्रियान्वयन सु जुड़िया न्यारा न्यारा पहलुआ माथे आज नवी दिल्ली माए बैठक भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परियोजना ने एमओयू सु जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा माथे अंतिम रूप दियो साथे ही किसाऊ बांध परियोजना माथे भी विचार विमर्श करियो इन मौके माथे श्री पाटिल कहो कि यमुना जल परियोजना ने दीर्घकालिक नजरिए रे साथ आगे बधायो जा रियो है इन रे तहत पानी ने पाइपलाइन रे माध्यम सु पहुंचाने रो प्रस्ताव है जिनसु वितरण व्यवस्था चौकी वेला बना कहो कि किसाऊ बांध परियोजना रे 12 माए 6 राज्य रा मुद्दा

0: रो समाधान व्यू है बेगू ही एमओयू भी करो जावेला।
1: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा कहो कि यमुना जल परियोजनावां सू सेखावाटी खेतर खास है बेगू बेगो इन्हें धरातल माथे लायो जावेला। वटी ने श्री सैनी कहो कि बैठक माए बरसात रे पानी ने सहेज राजस्थान पहुंचाने ने लेर विचार विमर्श भी करो गयो। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आज करौली पहुंचा वणा सर्किट हाउस पांचना संघर्ष समिति रा प्रतिनिधियां रे साथ बंटल करी। संघर्ष समिति रा अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और दूजा पंच पटेलारी उपस्थिति में समस्या रे समाधान खातिर विचार विमर्श करो गयो। इंद्र चालता करौली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहा। वठीने पांचना बांध सू सिंचाई खातिर नहरा माए पानी छोड़ने ने लेर सवाई माधोपुर जिले रा खंडीप गांव माए काश्तकारारो महापड़ाव आज भी जारी रहो। वठीने धरने रे कारण कुछ वक्त ताई रेल यातायात भी प्रभावित रहो। मौके माथे मोटी तादाद माए पुलिस बल तैनात है। जयपुर माए आज मंत्रिमंडलीय उप समिति री बैठक भी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवारी अध्यक्षता माए हुई। इन बैठक माए प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला माए रियायती दरा माथे जमीन आवंटन रा प्रकरणा माथे विचार विमर्श करो गयो। बैठक माए शिक्षा स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़िया प्रस्ताव माथे समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जोधपुर रा उम्मीद सफा खानारो जायजो करो। बना प्रसूतावां चिकित्सका और नर्सिंग स्टाफ सू बणतल कर उपचार व्यवस्थावां माते फीडबैक लियो। साथ ही अहलकारा ने चिकित्सा सेवावां ने बत्ती प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनावन खातिर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इंद्र पाछे खबर नवीसा सू बणतल माए श्रीमती राठौड़ कहो कि हर मरीज ने चोखो और सुरक्षित इलाज मुहैया करवाणो राज्य सरकार री सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन ने चिकित्सालय सारू भरोसो बनायो राखनो चाहिए। वणा कहो कि सगड़ा सफाखाना माए मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल एसओपी री पालना पक्की करने खातिर जोर दियो जा रियो है।
2: इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव बोर्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: ध्यान जोग है कि पावटा सफा खाना माए सिजेरियन रे पाछे प्रभावित प्रसूतावां रे इलाज और सेहत री सतत निगरानी राखी जा रही है। जिला प्रशासन वाणी स्वास्थ्य स्थिति माथे अपडेट देने खातिर मेडिकल बुलेटिन जारी करने रा हुकुम दिया है। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड रे पाछे आज जयपुर माए फायर सेफ्टी व्यवस्थावां री जांच खातिर खास अभियान चलायो गयो। नगर निगम और पुलिस री टीमा ने शहर माए कोचिंग संस्थावां और लाइब्रेरी रा अग्नि सुरक्षा इंतजामा री जांच करी। इन कार्रवाई माए 14 कोचिंग संस्थावां और पुस्तकालयां ने सील करो गयो। साथ ही 24 कोचिंग सेंटरां ने फायर सेफ्टी नियमां री अनुपालना खातिर नोटिस जारी कर गया। अभियान रे चालता नगर निगम पुलिस और प्रशासन री संयुक्त टीमा ने संस्थाना माए फायर सेफ्टी उपकरण आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी सू जुड़िया दस्तावेजारी जांच करी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 स्नातक दाखिला रा नतीजा घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नतीजा जारी करता थका बतायो कि उम्मीदवार CUET पोर्टल माथे आपरा स्कोर कार्ड देख सके है। एनटीए रे मुजब इन बरस मई महीना माए प्रवेश परीक्षा माए 11,00,000 सू 32 पढ़ेसरी भेड़ा व्याहा। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रिया हो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो नूवी दिल्ली माए शुभारंभ करयो। इन मौके माथे श्री शाह कहो कि काश्तकारा ने सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। वणा कहो कि सहकारिता मंत्रालय आवता 2 वर्षा माए दलहन री खरीद सीधे काश्तकारा सू खरीदने रो लखस राख्यो है। वणा किसानारी भागीदारी ने मजबूत करने खातिर खरीद कामा माए बिचौलियारी भूमिका ने खत्म करने रो हेलो करयो।
3: आने वाले दो

0: सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू बिरखारी आशंका ने देखता थका फसला ने सुरक्षित रखने और जरूरी कृषि प्रबंधन उपाया माथे खासा दिशा निर्देश दिया है। अलनीनो संकट रे संभावित असर सू निपटने खातिर आज वे कृषि मंत्रियां और मौसम महकमारा अहलकारा खातिर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। वना कहो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देशरा सगला जिला खातिर आकस्मिक योजनावा तैयार कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य सरकारा सू आ योजनावा ने प्रभावी रूप सू लागू करने री अर्ज करी है। साथ ही वना वैज्ञानिका सू काश्तकारा ने बकत माथे सही सलाह पहुंचाने री बात कही है।
2: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक होगा हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
1: और अब मौसम, राज्य माए आज कुछ एक थोड़ा माथे प्री मॉनसून गतिविधियां रो असर देखने ने मिलियो। सीकर और करौली माए दोपहरा पाचे मौसम बदलियो और तेज हवावारे साथ है धूल रो गुबार छाग्यो, साथ ही बूंदाबांदी हुई। वटीने श्रीगंगानगर जिले रा सूरतगढ़ राजियासर और दूजा कई इलाका माए तेज हवावा साथ है बरसात हुई। भरतपुर माए भी धूल भरी आंधी चाली। इंद्र पाछे कई देर हल्की बिरखा हुई। बीकानेर जैसलमेर और फलोदी समेत आसे पासे रा खेतरा माए भी हवावारे साथ बादलारी आवाजावी देखने मिली। मौसम महकमा रे मुजब आ 7 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज, वठीने 12 जिला माए येलो अलर्ट जारी करयो गयो है। 27 जून ताई जोधपुर कोटा और उदयपुर संभाग माए कठई कठई गरज चमक रे साथ हल्की बिरखा हो सके है। इनरे चालता कई जगावा माथे झोंकेदार हवावा चालने रा भी आसार है। दक्षिण राजस्थान माए बरसात री गतिविधियां माए कमी देखी जा सके है। भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वाने सोशल मीडिया पोस्ट माए श्री मोदी लिखियो कि महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी रा प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी ने मातृभूमि री सेवा खातिर प्रेरित करता रहेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आपरे निवास माथे डॉक्टर मुखर्जी रा फोटो माथे फूल चढ़ार वाने नमन करयो। मुख्यमंत्री कहो कि डॉक्टर मुखर्जी रो त्याग और राष्ट्र प्रथम रो संकल्प देश सेवारे मार्ग माथे चालने खातिर प्रेरित करतो रहेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर माए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रे बलिदान दिवस माथे राखीजा कार्यक्रम माए भाग लियो। इन मौके श्री शेखावत कहो कि वणा आपरो सगलो जीवन सेवा खातिर समर्पित करयो।
3: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
1: कोटपुतली खेतर्रा बनार गांव रे कने आज एक सड़क हादसा माए एक मीनक हर टाबरी री मौत वेगी। हादसो तेज रफ्तार डंपर री चपेट माए आने सूवियो। घटना रे पाछे खेतर माए शोक री लहर दौड़गी। युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि भारत अभूतपूर्व खेल क्रांति रो साक्षी बन रियो है। सोशल मीडिया पोस्ट माए आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस माथे आपरे संदेश माए डॉक्टर मांडविया कहो कि देश री खेल क्रांति खिलाड़ियां ने सशक्त बना रही है और हर नागरिक ने खेला ने जीवन शैली रे रूप माए अपनावन खातिर बधाओ दे रही है। वना कहो कि देश उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान रे ओलंपिक मूल्यां रो जश्न मना रियो है, जको दुनिया भर माए लाखों लोगों ने प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातिर 31 जुलाई ताई आवेदन किया जा सके है। सगड़ा नामांकन ऑनलाइन लिया जा रहा है। ए पुरस्कार 15 सू 18 बरस आयु वर्गरा टाबरा रे असाधारण साहस और सृजनात्मकता ने समर्पित है। आने 6 श्रेणिया माए दिया जावे है। राष्ट्रपति का

ए पुरस्कार हर बरस नवी दिल्ली माए आयोजित खास जलसा माए प्रदान करया जावे। जलसा माए आयोजन वीर बाल दिवस रे मौके माथे 26 दिसंबर ने करयो जावे है। और आखिर माए खास खबरां एकर फेरू सुनो। यमुना जल परियोजना वारे क्रियान्वयन ने लेर नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी। राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला। जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावां ने लेर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ। काश्तकारां सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायां माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारों ऊ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं और अब समय है हमारे किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुन वाला सभी करसान भाई बरना का ताई आपका साथी जुगल भाई को घणो घणो राम राम। करसान भाई बरनाओ खेती बाड़ी को काम चर खेती का बाड़ी का काम मत तो आपने ताई रात दिन चारनी पड़ोगो जज जार आपने कणु का पांदा पड़े छे। अब आ रही टाइम की असाडी जमाबा की टाइम आ रही छे सबने खेती की साफ सफाई हकाई जुताई खरारा कर सब रेडी हो रहा है काम सो और काली अंदर राजा की आड़ी देख रहा है कि यो बरस जाओ तो बीज बजोड़ो हाथ मल्या सोयाबीन बावा धान बावा और पूरी तैयारी के साथ आपन बटे जा करसान भाई बनाओ जीत में वही करसान चे जो समय पर बीज बजोड़ो जिन्हें तैयार कर रखो चे आपन पानी बरस जाओ और उनके बाद में बीज लेबा जावा खाद की व्यवस्था करा तो फिर दुख पाऊंगा। आबार समय चे यदि सोयाबीन बाणी चे कसी किस्म की बाणी चे तो आ बाणी लेर मल लिया दान बाणी चे तो बीज तैयार कर लिया या जन नर्सरी लगाई चे वो नर्सरी लगा खेत कताए तैयार कर पूरी रेडी रखना ताकि आपने बरसात होता है अपना अपनी फसलों के ताई मा सक। करसान भाई बनाओ खेती बाड़ी बना पशु के अधूरी चे अपना आगला बड़ा भी खेती करे चा तो दो दो चार चार पांच पांच पशु सब कर रहे चा और आज ही टाइम की जहाँ आधुनिकता की चकाचौंध में अपन ट्रैक्टर चल गया नई नई तकनीकी आ गई नया नया विकास खेती में होता जा रहा है लेकिन उनके बाद भी करसान भाई बनाओ दन रात जीत रफ्तार सो अपन रासायनिक दवा और रासायनिक खाद को प्रयोग कर रहे चा उस आज पूरा मानव जीवन पर असर पड़तो जा रहे चे अपनी प्रकृति पर असर पड़तो जा रहे चे अपनी फसलों पर असर पड़तो जा रहे चे पशु पक्षियों पर असर पड़तो जा रहे चे। करसान भाई बहनो आपना जो पशु चे वो स्वस्थ रह मस्त रह कुपोषण का शिकार न हो तो अपन समय समय से जो अपना दुधारू पशु चे दूसरा पशु चे वहीं देखता रहा। करसान भाई बनाओ वहां का लक्षण अपने ताई बाहर सुई दीख बल लाग जाओ चे जानवर दुबड़ो जाओ चे आड़ क्या दीख बल लाग जाओ चे या आंख के ऊपर मूछ के पास में गड्ढा सा पड़ जाओ चे और पेट भी अंदर सु दस्यो दस्यो नजर आओ चे वजन जानवर को गठबा लाग जाओ चे। करसान भाई बनाओ बाल

0: मांगू मांगू एक ही लाल बालाजी मारी सुनो तो सही। विश्वामित्र दाजी को गायो, यो लोक भजन आप लोगों ने सुनो। करसान भाई बनाओ, खेती बाड़ी के साथ साथ अस्या नरा सारा काम चे जी काम करर आपनी खेती के साथ उम भी आप पीसो कमा सकज। जस्या मधुमक्खी पालन चे, डेयरी पालन चे, मुर्गी पालन चे, मछली पालन चे, ई तरह का कई आपने खेती के साथ साथ अस्या उपाय कर सका चा अपन, जिसो अपनी आई बढ़ा सका चा। और असे ही एक करसान साथी आज आपने चौपाल में चे, वहाँ को अनुभव काय कचे, वो चे मधुमक्खी पालक चे। और वहाँ ने की तरह से शुरुआत करी, कसे आगे बढ़िया, काय काय परेशानी आई और काय काय में आज लाभ ही लाभ चे। तो आप भी मधुमक्खी पालन कर और खेती बाड़ी के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो सका चा। तो आज आपनी चौपाल में श्री महेंद्र मीणा चे और गांव अरण्या का तहसील पीपलदा का रबाड़ा चाहिए और यहाँ से बात कर रहा चा अपना नवीन भाई, तो सुनाया की बातचीत।
1: चौपाल में टेम टेम पर खूब सारी जानकारियां अपन ले छा। खेती और मधुमक्खी पालन दोनों को जो व्यवसाय छे वो आपस में एक दूसरा पर निर्भर छे। फसला में परागण की प्रक्रिया हो वो आवश्यक छे और परागण सबसे ज्यादा मधुमक्खियां के माध्यम से हो छे। अगर मधुमक्खी पालन आपन ने कर रखे छे तो अपनी खेती अपने तय अच्छी उपज देगी, ऐसे कृषि वैज्ञानिक भी बताओ छे और अपना किसान भाइयों ने खुद अनुभव भी करो छे। आज ऐसा ही एक किसान अपने चौपाल में साथ में छे, आप छे श्रीमान महेंद्र मीणा जी, आप रेवाड़ा छे ग्राम अरनिया तहसील पीपलदा जिला कोटा सु। तो सबसे पहले तो अपनी आवाज का पावना को आपनो स्वागत करा चा। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। राम राम साहब। खेती बाड़ी आपनो मुख्य विषय छे
2: जी सर।
1: तो खेती बाड़ी में अपन नया नया नवाचार करा, अपनी आय कत बढ़ावा, यो ही हमेशा सबको प्रयास रहे
2: जी सर।
1: तो आपको मान वो कहीं चे महेंद्र जी कि भाई खेती के साथ साथ कुछ ऐसा काम कर जाओ जिसकी वजह से अपने घर की जो आय छे वह बढ़े, कहीं की वो चाहोगे?
2: खेती के साथ साथ एक मधुमक्खी पालन भी एक शो व्यवसाय धंधो छे जिसो आपने आय दुगनी कर सके।
1: अच्छा,
2: खेती में भी शू 20-40% का सुधार हो, आपनो मुनाफो बढ़े छे।
1: बहुत बढ़िया।
2: उसको परागण की क्षमता बढ़े छे, किसाना के लिए जो अपना कृत्रिम मिट छे तो वहाँ की भी उसको लाभ मिले।
1: कितनी बढ़िया बात बताई देखो आपने कि भाई मित्र कीट जो छे वहाँ कहीं भी वहाँ कहीं भी लाभ मिले छे अपनो जीवन यापन करवा के लेकर, साथ के साथ ही अपनी जो आय छे वह भी बढ़े छे। कहाँ तय पढ़े लिखे छे?
2: 10वीं तक।
1: 10वीं तक पढ़ाई करवा के बाद में फिर कहीं खेती बाड़ी से जुड़ गया?
2: पहले खेती बाड़ी से जुड़ा।
1: अच्छा, तो घर में खेती छे?
2: खेती है।
1: कितनी छे आपके पास?
2: 20-25 बीघा खेती है।
1: 20-25 बीघा खेती करो छो आप?
2: जी सर।
1: तो खेती में आपने लगभग कतरा साल हो गया होगा खेती करता?
2: 10 साल हो गए।
1: 10 साल को खेती फायदामंद सौदो छे, कहीं करनी चाहिए सब एक तई?
2: खेती भी फायदेमंद छे, एक साथ साथ और भी अगर धंधो करा अपने, जैसे मधुमक्खी छे, कोई मुर्गा पालन छे, कोई बकरी पालन छे
1: जी,
2: तो इन सब भी खेती के साथ साथ आय अपनी आय बढ़ा सका चा।
1: बढ़ा सका चा। चलो बहुत अच्छी बात छे, कृषि करवो आवश्यकता छे। और जो कि अगर कृषि न करेंगे तो अपन खाऊंगा अनाज तो वहीं पैदा होगा, तो ये लिए भी अपन कृषि करनी छे। खेती में कई प्रकार से नवाचार हो छे, आपने जैसा की मधुमक्खी पालन भी एक नवाचार छे, उसो भी आपने आय बढ़ सके। आपने मधुमक्खी पालन करता कितना समय हो गया?

0: मैंने 15 से चालू किया, 2015 से चालू,
1: 2015 से चालू कर रहे थे, लगभग 11 साल से आप इन्हें संभाल रहे थे। कहाँ सीखे थे आप सबसे पहली?
0: ये मैं ग्रामीण में सीखा था सर।
1: कहाँ देख, आपने कब देखा ये और कहाँ देखा?
0: जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, जब मेरी बुआ के यहाँ, तो वहाँ बाहर से मधुमक्खी वाले आते थे। अच्छा। तो मेरी दिन रुचि थी थोड़ी उसमें, तो चला जाता था उनके पास देखने के लिए भाई कैसे क्या काम करते हैं, कैसे मधुमक्खी शहद निकालते, कैसे इनका शहद बनता है।
1: अच्छा।
0: कैसे इनको शहद निकाल की प्रक्रिया रहती है पूरी, तो थोड़ी थोड़ी ऐसी जानकारी ले ली
1: जी। फिर उसके बाद कोई प्रशिक्षण भी लियो?
0: प्रशिक्षण भी लिया था मैंने।
1: कहाँ पे लियो प्रशिक्षण?
0: प्रशिक्षण भी उस टाइम पे गांव में मिला था।
1: अच्छा अच्छा।
0: प्रशिक्षण गांव में गए थे, वहाँ टेंट लगे के वहीं प्रशिक्षण लिया था
1: जी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यो काम प्रारंभ करी?
0: हाँ जी सर।
1: तो अब यूं कह सके भाई, अगर अकेलो व्यक्ति ये काम न करे तो थोड़ी समस्या बढ़ जाए, तो कुछ व्यक्ति आते हैं अगर साथ ले लेवा, समूह बना लेवा, तो काम आसान हो जाओ।
0: एक समूह शू आसान हो जाओ, अकेला में कहीं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा रहती है, अकेला नहीं कर पाता। समूह से अपन हिल मिल के काम कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। तो आपके समूह में कितना लोग भाग था जब आपने शुरुआत करी?
0: उस टाइम पे हमारे समूह में 10 लोग जुड़े थे।
1: 10 व्यक्ति यहाँ से आपने यो काम प्रारंभ करियो, कतरा बक्सा था शुरुआत में?
0: उस टाइम हमने 20-20 बॉक्स लिए थे,
1: तो लगभग 200 बॉक्स हो गए।
0: 200 बॉक्स हो गए।
1: तो 200 बक्सा से आपने यो काम चालू करियो, आपको कहीं पहला साल में कहीं लगे कि भाई कुछ पाऊंगा या ऐसी कोई बात
0: नहीं? उस टाइम में पहले साल में हमें प्रॉफिट मिला था।
1: मिली? बहुत बढ़िया बात,
0: प्रॉफिट मिला था।
1: तो फिर आगे बढ़वा की हिम्मत हुई?
0: आगे बढ़वा की हिम्मत हुई, तो आज भी उस में काम कर रहे हैं दिल से।
1: बहुत अच्छी बात। अच्छा, वो जो 10 व्यक्ति आपके साथ शुरुआत में जुड़े थे 10 साल पहले, 11 साल पहले, कहीं आज भी आपके साथ चाहिए या फिर वहां भी अपना अपना काम?
0: नहीं, उन्होंने अपने अपने स्तर पे, सबने अपने अपने स्तर पे धंधा कर लिया। किसी के पास 200 बक्स पर्सनल हो गई, किसी के पास 300 भी, किसी के पास 100 भी है, तो सब अपने अपने स्तर पे करने लग गए।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, सबको कहीं आगे बढ़वा को मौका मिलनी चाहिए और प्रयास करनी चाहिए कि अपनी आय बढ़ा सके।
0: उनसे 10-20 आदमी को वो रोजगार मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको अब जो है खुद को अलग हो गयो सारो काम, आपके पास भी लोग भाग लग रहे होगा?
0: हाँ, दो आदमी लग,
1: दो व्यक्ति आपने भी लगा रखे हैं सार संभाल कर भाग लेगा। और अब आपके पास कितना बक्सा है?
0: 100 बक्से अभी।
1: अब आ रही टाइम पर
0: मैं 100 से ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि खेती भी संभाल नहीं रहती, तो उनको आयात निर्यात कर देता हूँ मैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे 100 बक्सा को खर्चो साल भर में कतरो आ जाओ, वक्त जैसे आवा जाबो, वक्त खिलाबो पिलाबो सब मिला कर कतनो खर्चो बैठ जाओ?
0: माइक्रोशन करा के खाने पीने करा 1-1.5 लाख रूपये का खर्चा तो बैठ ही जाता है
1: भाई। 1.5 लाख रूपये खर्च हो गया, अब ऊसो अपन साल भर में कतनो पालियो?
0: 3-3.5 लाख रूपये की आमदनी कम से कम हो जाती है,
1: मतलब लागत सो सलाह तौर पर कई खेगा की तरीका से वही चालू करनी चाहिए, फैली उगत सीखनी चाहिए, प्रशिक्षण लेनी चाहिए, या फिर कहीं उगत जाकर खुद काम देखनी चाहिए ताकि वही अंदाजो लगे कि की तरीका से काम करे?
0: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रशिक्षण से अच्छा प्रशिक्षण भी लेना चाहिए, पर उसके अलावा खुद को एक बार जहाँ भी मधुमक्खी का पालन कोई कर रहा है वहाँ खुद को देखना चाहिए, कैसे मधुमक्खी होती, कैसे इनका आना जाना रहता है, कैसे काम करती, कैसे शहद निकालता है, उससे ज्यादा जानकारी मिलती है।
1: अच्छा, कई बार जैसे आपके साथ भी कोई समस्या आएगी ऐसी, जैसे लोग बाग अपनी फसलों के कीड़ा मकोड़ा से बचावा के लेकर कई बार रसायन छिड़क दे, कीटनाशक छिड़क दिया, अब आपने मधुमक्खियां आपने वहीं रख रखी चाहिए या फिर वो मधुमक्खियां आप वो खेत में चल जाओ तो वो मर भी सके छे, तो कोई ऐसी समस्या भी आ
0: नहीं? ये तो आज भी समस्या है, गाँव में ज्यादा समस्या है। हाँ। क्योंकि गाँव के लोग अधिकांश कीटनाशक का उपयोग ज्यादा करते हैं
1: जी,
0: तो उससे मधुमक्खियों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल। तो मतलब आप जैसे जहाँ आपका बॉक्स लाग रहा है मधुमक्खियों का, कहीं वहाँ जो किसान भाई छे कहीं वहां सलाह दे चो आपको भाई, अगर आप या पहले तो जैविक उपयोग कर, अगर मान लो कन कीटनाशक भी अगर वहां छिड़कना चाहे तो जैविक कीटनाशक चाहिए वहां को उपयोग कर, और अगर मान लो फिर भी रासायनिक पे ही आनी पड़े तो कम से कम आप लोग सूचित कर दे तो बढ़िया रहे।
0: नहीं, उनसे कहा जा, कहते हैं हम जब भी भैया, तो जब भी अगर आप स्प्रे करो तो सुबह शाम के टाइम पे करो, ताकि मक्खी जब भी बाहर निकल, दिन में निकल, सुबह शाम बहुत कम निकलती है, तो उस टाइम पे स्प्रे करना। अगर कीटनाशक भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर सुबह शाम का टाइम रखो।
1: अच्छा, कई किसान भाई तांग टाइम मना भी करता होगा?
0: बहुत सारे किसान मना भी करते, कोई लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार, हम यहाँ रखने देंगे।
1: बिल्कुल।

0: तो मांगते हैं कैसे समझाओ फिर आप?
1: हम उनको इसी प्रकार से समझाते हैं कि आपकी फसल में मधुमक्खी से 20-40% तक का मुनाफा होता है, ये परागण की क्षमता को बढ़ाता है
0: जी।
1: एक फूल से जब मक्खी एक फूल में रस लेने के लिए जाती है तो एक फूल से दूसरे फूल में जाती है, उससे परागण की क्षमता बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: इससे अपनी फसल में 20-40% का मुनाफा भी होता है, बढ़ के निकलती है।
0: तो फिर वो मान जाओ
1: बहुत सारे जो समझदार है आजकल के पढ़े लिखे तो अब समझने भी लग गए
0: जी।
1: कुछ फीस भी 20% रह रहे वो भी धीरे धीरे समझने लग जाएंगे।
0: कई बार लोग बाग यह कहता भी सुने होगा, कहते ना ना माँ बक्सा न रखो, अम्मा का फूल आगो रस चूस ले जाओ तो माँ का उठी गाड़ी चेना जाए, उत्पादन में फर्क पड़ जाओ, अनाज कम बैठो को।
1: बहुत सारे ऐसे भी आदमी रहते हैं कि हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा, ये तो पूरे फूलों को ले जाएगी।
0: तो वहाँ कहता है समझ, यह चीज को समझ वो जरूरी है कि वो ऐसी कोई बात कोई ना, उसे और ज्यादा अनाज उत्पादन हो,
1: इससे फसलों में उत्पत्ति ज्यादा होती है, बड़ा
0: बढ़ती है,
1: परागण की क्षमता इससे बढ़ती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये संदेश जो है अपना किसान भाई के पास भी पहुंचे होगो। अच्छा, और यूं बताओ कि जैसे मधुमक्खी पालन जब आपन कर रहे थे तो यो जो गर्मी को टेम रहे, यो गर्मी का टेम में थोड़ी समस्या आओ छे, क्योंकि फसल आसपास अपना हो कोई ना इतनी ज्यादा मात्रा में, तो ये टाइम पर फिर कैसे आप व्यवस्था बनाओ?
1: ये टाइम पर अपन जो यूपी साइड में जो बाग चाहे आम का, कोई नीम का, कोई जामुन का, उस तरफ ले जाते हैं, वहाँ इस टाइम पे सब्जी के ज्यादा अधिकांश सब्जियां होती है, आम के भाग होते हैं, तो उन छाओं में रख देते हैं। उस टाइम इस टाइम पे थोड़ा सा उनको पेट पूजा के लिए चीनी का घोल दिया जाता है।
0: अच्छा भाई, जिंदा रहने के लिए,
1: जिंदा रहने के लिए।
0: हाँ।
1: तो उनको आसानी से पर्याप्त भोजन मिल जाता है और छांव मिल जाते हैं आमों के बाग।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग फिर रकबा के लेकर तैयार हो जाओ जो?
1: नहीं, तैयार तो नहीं होते, उनके थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है।
0: अच्छा। हाँ,
1: कि भाई जी सर हम आपके लिए इतने से पैसे दे देंगे। तो उनके लोग थोड़ा समझदारी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रख लेने देते।
0: चलो बहुत अच्छी बात है भाई, आपस में एक दूसरा को सहयोग करके ही काम हो, तो यह बहुत बढ़िया बात है। आपने यहाँ भी जैसा कई तरह का शहद बाजार में उपलब्ध है, आप खुद भी अलग अलग तरीका को शहद उत्पादित करा चाहे, जैसे आपके यहाँ कैसे कैसे शहद आप उत्पादित करा चाहे, जैसे सरसों को हो, धनिया को हो, एक अलावा जैसे कई जंगल में जो
1: खेर का
0: वहां को रहे चे, तो किस कितना प्रकार को आपके पास उपलब्ध है?
1: जैसे हमारे पास अधिकांश अपने क्षेत्र में राजस्थान में, इधर अपने कोटा क्षेत्र में बाहर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं, इधर सरसों भी मिलती है, धनिया भी मिलता है, अजवाइन भी मिलती है, कीकर भी मिलता है, और बाकी सब्जियों के फूलों के भी मिलते हैं।
0: बिल्कुल। तो जैसे आप तो शहद का मतलब माहिर छे, उत्पादन का क्षेत्र में भी और खुद भी प्रयोग करता होगा घर में भी, तो कछु जो शहद रहे वो सबसे ज्यादा अच्छा रहे पौष्टिकता में भी और स्वाद में भी?
1: स्वाद में से सबसे बेस्ट कीकर का शहद माना जाता है।
0: अच्छा,
1: जो बबूल होता है ना
0: जी जी,
1: सबसे
0: जी।
1: उसमें क्या ना तो कोई दवाई रहती है, न किसी प्रकार का खाद रासायनिक खाद, कोई खाद दवाई नहीं रहती,
0: देसी बोल जिकते हैं अपन उनको,
1: एक खेर का। ऐसे शीशम का भी रहता है
0: जी,
1: तीनों अच्छा रहता है, इसमें कोई दवाई कोई खाद वगैरह नहीं रहता।
0: स्वाद में कुछ अंतर
1: नहीं? बिल्कुल, स्वाद में अंतर नहीं रहता, एकदम बहुत बढ़िया स्वाद रहता है।
0: कई बार जैसे लोग बागा की शिकायत हो कि माँ के तो शहद की शीशी में जो शहद जम गयो, तो वो कैसे?
1: ओरिजिनल शहद हमेशा जमेगा।
0: अच्छा,
1: अगर ओरिजिनल जो शहद रहेगा वो जमेगा।
0: हाँ,
1: इसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है
0: जी, तो वो अगर जम रहे तो कि मतलब अपन ये उन्हें खराब न माना, यो समझा कि भाई वो सही
1: है। सही है, बिल्कुल सही
0: ना,
1: सही।
0: या हो सकता
1: है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो चीनी मिला के करते हैं तो चीनी जम जाती, चीनी कभी छाछ नहीं बनाए, चीनी जमती नहीं है।
0: हाँ, हाँ।
1: कभी भी चीनी जमती नहीं है, छाछ नहीं बनाएंगे जमेगी नहीं चीनी
0: जी। सलाह के तौर पर कहीं की होगा चलता चलता कि भाई खेती के साथ साथ अगर ये तरीका का व्यवसाय करा तो अपन अपनी आय भी बढ़ा सके और देश को बोलो भी कर सके।
1: किसान भाइयों से तो मेरा यही अनुरोध है कि खेती के साथ साथ अपन ज्यादा नहीं कर सके, 5 बॉक्स से शुरुआत कर सकते हैं, 10 बॉक्स से शुरुआत कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी खेती में कहीं मेरे पे रख के अपन उससे शुरुआत कर सकते, अपनी खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और अपने आमदनी को भी बढ़ावा मिलेगा उससे।
0: कोई आपसे अगर जुड़वो चाहो, आपसे कोई जानकारी लेवो चाहो तो कहाँ संपर्क करे?
1: संपर्क नंबर ये है, मैं गाँव अरनिया से हूँ।
0: आपका मोबाइल नंबर वगैरह आप दे सको जो अगर?
1: मेरा मोबाइल नंबर 9799156502 है, ग्राम अरनिया, तहसील पिपलदा, जिला कोटा।
0: बहुत बढ़िया महेंद्र जी, आप चौपाल में आया और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें और इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी आपने सब किसान भाइयों के लिए दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम साहब।
2: कितनी बढ़िया बात करसान भाई बनाओ, महेंद्र जी ने बताई छे, बहुत ही बढ़िया काम छे कि खेती के साथ साथ आपने मधुमक्खी पालन

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनिए लोक गीत पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा ढेर सारा स्वागत और ढेर सारा प्रणाम। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले लेकर जा रहे हैं आज के इस संगीत के अंदर। पहली पेशकश भंवर सिंह की आवाज में ये लोकगीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 24 जून को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मृगेंद्र जोशी जी से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 24 जून को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर है 0744-294-1142।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। चौपाल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक बुधवार को साय 7 बजे से साय 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें दिनांक 24 जून 2026 बुधवार को प्रसारण का विषय होगा बरसात के समय पशुओं में होने वाली स्वास्थ्य समस्या और समाधान, तथा इस पर स्टूडियो में बातचीत के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कमल चंद मीणा उपस्थित होंगे। श्रोतागण हमारे टेलीफोन नंबर 0744-294-1142 पर प्रत्येक बुधवार साय 7 बजे से 7:30 बजे तक अपने फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: और माटी में मल जाना रे प्राणी, और माटी में मल जाना।

0: मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

से लड़तो रे भाया आया संत से लड़तो अरे गोखा बैठो करे कुआन आया संत से लड़तो ई करनी को बण्यो गधेड़ो ई करनी को बण्यो गधेड़ो

ए जोड़ जोड़ माया ने मिले अंडी उंडी धरतो, अरे जोड़ जोड़ माया ने मिले अंडी उंडी धरतो, ई करनी को बण्यो सपेरो, ई करनी को बण्यो सपेरो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनिए चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से, ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, लिखा है असद भोपाली ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से श्रेया घोषाल की आवाज में, जिसे लिखा है जयदीप सानी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

ना देख लो। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म वीर जारा से, जिसे गाया है उदित नारायण ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

जावेद अली, इरफान अशरग और शादाब की आवाजों में फिल्म तुम मिले से ये गीत, जिसे लिखा है सैयद कादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: 得住。
1: कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी से, जिसे गाया है संदीप सिंह और पैरी जी अमान तरीका ने, लिखा है लवराज पैरी जी ने और संगीत दिया है हितेश मोड़क ने।

अरिजीत सिंह और अंतारा मित्रा की आवाजों में फिल्म दिलवाले से ये गीत, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

नीति मोहन की आवाज में फिल्म पद्मावती गीत, जिसे लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

जैकपॉट फिल्म से गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा है तुराज अजीम शेराजी ने और संगीत दिया है शरीफ तोशी ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत ही समाप्त होता है। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार संध्या सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा

0: इकाई का अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मानसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अलिनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक

0: 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
2: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
2: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं और अब समय है हमारे खास कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जो जो नज़्म शरीज की ही आवाज़ में फिल्म हॉन्टेड से ये गीत, जिसे लिखा है जुनेद वासी ने और संगीत दिया है चित्रंतन भट्ट ने।

फिल्म गुलाम से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म खुद्दार से ये गीत, जिसे लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म सरफरोश ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

उदित नारायण और कुणाल गांजावाला की आवाजों में फिल्म हलचल से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है विद्या सागर ने।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म अनाड़ी से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में फिल्म फना से गीत, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा एक कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आए जो वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों की गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरे निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी जिंदगी की नई वसीयत और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

हंसने की चाहत कई बार जिंदगी को आंसुओं का सैलाब बना देती है। आंखों की नदी को मुस्कुराहट से ढक लेते हैं हम।

दिल में खामोशियों का जहां होता है, चेहरा यूं ही कुछ बोलता रहता है, क्योंकि बोलना इंसान की फितरत है। भीड़ में रहते हुए भी हम एकाकी होते हैं, हंसने की चाहत में हम आंखों में नदी भर लेते हैं।

हमदर्द, हमसाया, हमसफर का जुदा होना जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर उनका साथ निभाती है।

हमारे मन में यादों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें। कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है, कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं, कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: ढलती जाए रात,
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
5: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार और थोड़ी ही देर बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के

0: के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।